0: श्रोताओं, सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: आज शिक्षक दिवस है। विचार करें, शिक्षा व ज्ञान के दाता शिक्षक वर्ग और उनसे जुड़े विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के अटूट संबंध को। भारत भूमि में गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। आज इस महान मान्यता को हमें पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, शिक्षित और चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही हो सकता है।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ बात करते हैं पशुओं के लिए उत्तम आहार अजोला के संदर्भ में। अजोला एक जलीय पौधा होता है। अजोला तालाबों, पानी के गड्ढों और नम गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे प्रकाश की आवश्यकता होती है और ये आंशिक यानी 25-50% सूर्यप्रकाश में बहुत अच्छी तरह से पनपता है। इसके प्रजनन और विकास के लिए सर्वोत्तम तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस है और 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर इस पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता 85-90% और पीएच मान 5-7 इसके लिए उत्तम है। अजोला जल से ही आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। जहाँ तक अजोला के लिए तालाब के चयन का सवाल है तो आवश्यक देखभाल के लिए अजोला के लिए घर के निकट के तालाब का चयन करना बेहतर होता है। नियमित जल की आपूर्ति आवश्यक है। जिस स्थान पर तालाब का चयन किया गया हो वहां पर आंशिक सूर्यप्रकाश का रहना बेहतर पैदावार सुनिश्चित करेगा, अन्यथा छांव प्रदान करनी होगी। इससे न केवल जल का वाष्पीकरण कम होगा बल्कि अजोला की उपज भी बढ़ेगी। तालाबों के आकार और निर्माण पर अगर हम ध्यान दें तो ये पशुओं की संख्या, पूरक आवश्यक फीड और संसाधनों की उपलब्धता की मात्रा जैसे कारकों पर निर्भर करती है। छोटे किसानों के लिए प्रतिदिन 0.7 किलोग्राम से अधिक पूरक चारा उत्पादन हेतु अजोला की खेती के लिए 6×4 फीट का क्षेत्र पर्याप्त होता है। चयनित क्षेत्र को पूरी तरह से साफ और समतल बनाया जाना चाहिए। तालाब की दीवारों को या तो ईंटों या खुदाई की मिट्टी के साथ बनाया जा सकता है। तालाब में टिकाऊ प्लास्टिक शीट बिछाने के बाद दीवारों पर ईंट रखकर चारों तरफ से सुरक्षित किया जाना चाहिए। पानी के रिसाव को रोकने के लिए छेद या दरार नहीं होना चाहिए एवं तालाब में अजोला के कल्चर का टीका लगाने के बाद

तालाब को जाल से ढक देना चाहिए जिससे आंशिक छाया प्रदान हो सके और तालाब में पत्तियों और अन्य अनावश्यक पदार्थों को जाने से रोका जा सके। अजोला उगाने के लिए रेडीमेड HDPE या PVC से बना तालाब भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये तालाब विभिन्न आकारों जैसे 10x3, 15x3, 20x3 फीट आदि में आते हैं। किसान अपने पास उपलब्ध पशुओं की संख्या और अजोला की दैनिक आवश्यकता के आधार पर तालाब का आकार चुन सकते हैं जो उन्हें खिलाने के लिए प्रतिदिन चाहिए। 20x3 फीट तालाब से प्रतिदिन 2

0: की संख्या और अजोला की दैनिक आवश्यकता के आधार पर तालाब का आकार चुन सकते हैं जो उन्हें खिलाने के लिए प्रतिदिन चाहिए। 20 × 3 फीट तालाब से प्रतिदिन 2 किलोग्राम ताज़ा अजोला प्राप्त किया जा सकता है। ये HDPI तालाब सिल्पुलिन शीट से बने तालाबों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं। अजोला उत्पादन के लिए उपजाऊ मिश्रित मिट्टी के साथ गोबर और पानी को समान रूप से मिलाकर तालाब में फैलाने की ज़रूरत होती है। पानी की गहराई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। तालाब की सतह भी समतल होनी चाहिए जिससे पूरे तालाब में पानी की गहराई समान रूप से रहे। मानसून के मौसम के दौरान बारिश के पानी का संचयन छत आदि से किया जा सकता है। अजोला की खेती के लिए इस संचित जल का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक उत्कृष्ट और तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। जहां तक तालाब के रखरखाव का सवाल है तो 1 किलोग्राम गोबर और 100 ग्राम सुपरफास्फेट को तालाब में 15 दिनों में एक बार प्रयोग करने से अजोला का बेहतर विकास सुनिश्चित होगा। तालाब को 6 महीने में एक बार खाली कर दिया जाना चाहिए। खेती की शुरुआत के लिए ताज़ा अजोला का कल्चर और मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। 3 सप्ताह के समय में अजोला की पैदावार पूरी हो जाती है। पूर्ण विकास के बाद इसे दैनिक तौर पर काटा जा सकता है। अजोला के अधिक उत्पादन की स्थिति में इसे छाया में सुखाया जा सकता है। इसे सुरक्षित रूप से भविष्य में इस्तेमाल के लिए संरक्षित भी किया जा सकता है। इसके स्वाद से रूबरू होने के लिए जानवरों को कुछ दिन लग जाते हैं, इसलिए यह बेहतर है कि शुरू शुरू में इसे दाने के साथ मिलाकर खिलाया जाए। अजोला को अच्छी तरह से ताज़े पानी से धोना चाहिए जिससे कि गोबर की गंध हट जाए। जब अधिक उत्पादन होता है तो अजोला को छाया में सुखाकर प्लास्टिक के ड्रमों में संग्रहित किया जा सकता है। सूखे अजोला का उपयोग पशु चारा की कमी के समय में किया जा सकता है।
1: एग्री टिप्स अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्रशासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में

0: आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on advancing the treatment of valvular and structural heart diseases. He will also launch the India Valve Registry at Guindy in Chennai. The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a five-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing border updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on the 26th of last month. The UN General Assembly has voted to replace the traditional world map with one that more accurately reflects the size of Africa. The Correct the Map resolution, sponsored by Togo and backed by African Union members, passed with the support of 164 nations, include France and the UK. The United States was the only nation to vote against it, while six countries abstained. The UN vote is non-binding, but it will encourage governments and institutions to stop using the traditional Mercator map. The National Testing Agency has released admit cards for candidates appearing for UGC NET June 2026 in English, Commerce and Sociology on the 9th and 10th of this month. Candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. The World Archery Para Series 2026 begins at Ahmedabad in Gujarat today. The event brings together 105 athletes from 19 countries. It is the first time India is hosting the World Archery Para Series. The third stage of the series is being held at the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad and will continue till 9th of this month. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah virtually inaugurated the event last evening. Addressing the gathering, he said, India is moving towards becoming a global sporting hub. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए सोमवार 7 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जहाज डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए मंगलवार 8 तारीख को सुबह 7 बजे लौटेगा। एमवी कैंपल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए एमवी कालीघाट सोमवार 7 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज मंगलवार 8 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी चंगा आज शाम 5 श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप

और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 6 सितंबर को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए आज ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी।

स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सोनिया। श्रोताओं, इंद्रधनुष यानी जिंदगी के सात रंग, और इन सात रंगों में सबसे प्यारा रंग है बचपन का रंग। जी हाँ, बच्चे जिनकी हंसी में खुशी है, जिनकी शरारतों में अपनापन है, जिनकी आंखों में सपने हैं और जिनकी छोटी सी दुनिया में ढेर सारी बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं।

श्रोताओं, बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। वे घर की जान होते हैं, माता पिता की मुस्कान होते हैं। इनकी खिलखिलाहट से ही तो घर आंगन आबाद रहता है।

श्रोताओं, बच्चे केवल हमारे प्यार और दुलार के पात्र ही नहीं हैं, बल्कि वे समाज के भविष्य की नींव भी हैं। जरूरत है तो बस उनके भीतर छिपे प्रतिभा को पहचानने की।

0: जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है वही जिंदगी सबसे खूबसूरत लगती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम से आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान।

श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि अन्य सेवकों को लेकर पुष्पक विमान उत्तर दिशा में अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी स्नान आदि के पश्चात श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वे ब्रह्मचारी के रूप में अयोध्या जाकर यहाँ का समाचार सुनावें और वहाँ का कुशल क्षेम पूछकर लौटें।

अभी आप ए हरिहरन की आवाज में रामचरितमानस गान की 352वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

वतन के गीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि जन सेवाओं के लिए बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और सहयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुशाल कुमार वैद्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जीबी पंत हॉस्पिटल। ये कार्यक्रम आप 100.9 विविध भारती FM पर भी सुन पाएंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश सवेरे 10:00। फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम होगा गीत गुंजन दिन में 11:00। दिन में 11:25 पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने के समारोह का सीधा प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तेलुगु में दोपहर 12:00 टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जानकारियां दी जाएंगी। 12:30 पर मलयालम में नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी व राष्ट्रीय नेत्रदान सप्ताह पर चर्चाएँ होंगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत में आप लता मंगेशकर

को सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक तथा 3:30 सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा टीचर्स डे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जानकारियां दी जाएंगी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे 4:30 पर 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल में 5:00 युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा और शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर चर्चा की जाएगी। 5:30 बांग्ला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और शिक्षक दिवस पर जानकारियां आप सुन पाएंगे। किसानवाणी कार्यक्रम संध्या 6:00, जिसमें शिक्षिका विधि सिंह के साथ बातचीत का विषय रहेगा ज्ञान संसार और भविष्य का शिल्पकार। संध्या 6:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने 6:45 पर श्री अनिल सक्सेना की लिखी झलकी आप सुन पाएंगे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं संध्या 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया युवाणी के तहत। संध्या 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम ऐसा भी होता है। इसके अलावा शिक्षक दिवस पर चर्चा की जाएगी। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का रात्रि 8:00। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती तथा रात्रि 10:00 संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत विद्वान वी काली प्रसाद बाबू से मृदंगम और विठल राजपुरा से पखावज वादन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात 10:00 100.9 विविध भारती FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 9.3 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 98% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:27।

और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त सूचना सुन रहे थे।

श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और सहयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुशाल कुमार वैद्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जीबी पंत हॉस्पिटल। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 232558, एसटीडी कोड है 03192।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह की 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के एक दल ने लोक निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। डिगलीपुर के नवग्राम में स्टेट हाईवे 14 पर स्थित स्टील बैली ब्रिज को मरम्मत कार्य के लिए 8 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से 11 सितंबर को रेड रन मैराथन का आयोजन। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वे ऐसे पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीप समूह के शिक्षक समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रगतिशील, प्रबुद्ध और ज्ञान आधारित समाज की नींव है। उपराज्यपाल ने द्वीपों के सभी शिक्षकों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की है, जो भौगोलिक और लॉजिस्टिकल चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन ढंग से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने

एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने और युवा पीढ़ी को तैयार करने में उनके योगदान की सराहना की। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों का एक दल कल से 8 सितंबर तक द्वीप समूह के तीनों जिलों में उपयुक्त जगहों का निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की सिफारिश के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना है। इस दौरान टीम ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। टीम ने प्रस्तावित योजना के लिए संभावित जगह और उससे जुड़ी अन्य विशेषताओं के बारे में प्रस्तुति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, ब्रिज बंद और रेड ड्रॉन मैराथन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डिगलीपुर के नवाग्राम में स्टेट हाईवे 14 पर स्थित स्टील वैली ब्रिज को मरम्मत कार्य के लिए 8 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह पुल कालीघाट और रामनगर क्षेत्र के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग है। डिगलीपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संतोष प्रकाश ने जन सुरक्षा और मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए पुल से सभी प्रकार के वाहनों और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है। इस दौरान आम जनता और वाहनों को कालरा के जेई कार्यालय से मध्यम ग्राम चौक तक वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अंडमान लोक निर्माण विभाग को निर्धारित अवधि में मरम्मत कार्य पूरा कर पुल को शीघ्र पुनः खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिगलीपुर के उप पुलिस अधीक्षक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने यूटी आत्मा योजना के तहत हाल ही में उत्तरागांव की एक निजी खेत में एक निदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुपालकों को बेहतर पशुपालन के तरीकों को अपनाने के लिए व्यवहारिक क्षेत्र स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह देना था। निदर्शन के दौरान भाग लेने वाले किसानों को वैज्ञानिक पशु प्रबंधन, बेहतर खान पान के तरीकों और पशुओं की सेहत और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए समय पर पशु चिकित्सा सहायता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। उधर पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने रंगाचांग पशु चिकित्सा औषधालय के माध्यम से हाल ही में रंगाचांग 4 के एक निजी खेत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बकरी पालन पर किसानों के लिए एक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उपप्रधान एन कार्तिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुधन बीमा योजना, बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों से बकरी पालन से जुड़े कई विषयों को शामिल किया गया। रंगाचांग पशु चिकित्सा औषधालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने खुर छाटने और पेट के कीड़े खत्म करने जैसी प्रक्रियाओं का भी निरीक्षण किया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से लोगों के बीच HIV और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह रेड रन पुरुष और महिला श्रेणियों में 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। यह दौड़ अंडमान क्लब से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल फ्लैग पॉइंट मजाज से होते हुए उसी मार्ग से वापस अंडमान क्लब पर समाप्त होगी। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 9 सितंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक प्रतिभागी गूगल फॉर्म लिंक या QR

0: कोड को स्कैन कर पंजीकरण कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ हैं वे मौके पर पंजीकरण कर सकते हैं। सभी प्रतिभागियों से सुबह 5:30 बजे तक नेताजी स्टेडियम में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए कदमतला पुलिस स्टेशन की टीम ने हाल ही में कदमतला में एक रिहायशी जगह पर तलाशी ली। इस दौरान लगभग 100 ग्राम वजन का उगाया हुआ गांजे का एक पौधा बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर कदमतला पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी तथा डी परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के एक दल ने लोक निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। डिगलीपुर के नवग्राम में स्टेट हाईवे 14 पर स्थित स्टील बैली ब्रिज को मरम्मत कार्य के लिए 8 सितम्बर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से 11 सितंबर को रेड रन मैराथन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी श्रोताओं, इस कार्यक्रम में है मातृभूमि की महिमा, वीरों की वीर गाथाएं और देश प्रेम के मधुर सुर। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां हिमालय सा अड़िग साहस है, गंगा सा पवित्र हृदय है और तिरंगे से ऊंचा स्वाभिमान है। हम गर्व से कहते हैं भारत देश महान है। ये धरती हमारी है, इसमें वीरों के बलिदान की कहानी है, हर कण कण में देशभक्ति की आग और शौर्य की निशानी है।

श्रोताओं, भारत देश महान है और हम इसकी संतान, इस मिट्टी का कर्ज हम अपने अच्छे कर्मों से चुकाएंगे। ये एक परिवार है और हम सब उसके गर्व से भरे हुए बच्चे हैं। जिस धरती ने हमें जन्म दिया, उसका सम्मान और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम भारत की संतान हैं। सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत ही हमारी असली शान है।

0: श्रोताओं, आइए संकल्प लें, हम अपने देश की गरिमा, एकता और सम्मान को सदैव बनाए रखेंगे। अब लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
1: देश रागिनी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर,

0: कुछ नहीं है।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं श्री विद्या। श्रोताओं, हर वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर सहयोग और उचित मदद के महत्व को समझना तथा एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए आज हेलो डॉक्टर के माध्यम से हम आपके लिए एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं। हमारा आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहयोग। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कुशाल कुमार वैद्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जीबी पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: श्रोताओं, यदि आपके मन में भी मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 232-558, एसटीडी कोड है 03192। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आज के समय में इतनी आवश्यक क्यों है?
2: जब हम मानसिक स्वास्थ्य का बात करते हैं जब भी, तो ये सिर्फ किसी में मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य हम जब बोलते हैं तब वो इंसान का मानसिक स्वास्थ्य तब अच्छा बोलेंगे अगर वो अपने दिनचर्या का जो काम है वो बिना तनाव के कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकता है, उसका मन के जैसे उदासी होना या बेचैनी होना ये सब ना हो, उसका नींद ठीक रहे और अपनी जो क्षमता के अनुसार वो अच्छे से काम कर सके।
1: जी जी,
2: तब हम कहते हैं कि किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ

0: मन का या ब्रेन की बीमारियों के बारे में नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसमें प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी का शारीरिक स्वास्थ्य अगर ख़राब हो तो ये स्वाभाविक है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। वैसे ही किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो बहुत चांसेस है कि उसको दूसरी कई सारी शारीरिक बीमारी भी आ सकती है।
1: जी, क्या आपको लगता है कि आज भी लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं?
0: अभी भी समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेके मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि इसके बारे में कई तरह के भ्रम और स्टिग्मा है। इसीलिए समय समय पर देश भर में या विश्व लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं ताकि इस पर लोग बात करें और इसके बारे में जानें।
1: जी, शायद यही झिझक और चुप्पी कई बार लोगों को समय पर मदद लेने से भी रोक देती है। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस वर्ष की थीम है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड।
0: जी,
1: तो इसका सरल में अर्थ हमें समझाएं।
0: जो चेंजिंग द नैरेटिव ये जो थीम है
1: जी,
0: ये 3 वर्षीय रखा गया है इसको। इसका कारण ये है कि लोग ताकि इस विषय के बारे में बात तो करें बट इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पर जो मन में भ्रांतियां हैं लोगों के मन में इसको लेकर या इसको लेकर जो स्टिग्मा है, कलंक है, उसके वो दूर हो सके।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: जी, बताइए आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सीतारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: अपना प्रश्न रखिए
2: जी। मेरी उम्र 65 वर्ष है। 55
0: जी।
2: कभी कभी मन घबराता है कि हम जान दे दिया जाए, ये मानसिक रोग है या क्या है, कुछ विचार दिया जाए।
0: नहीं, अगर कभी कभी जान घबराना और अगर किसी को अगर मौत के बारे में, जान दे देने के बारे में अगर इस तरह के ख्याल आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को अपने किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। अगर वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो परामर्श ना ले पाएँ तो टेलीमानस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीमानस का प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर 144416 144416 है। इस पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हर स्टेट में ये नंबर चलता है और इस पे जब आप फ़ोन करेंगे तो अगले एंड पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो आपकी समस्याओं को सुनते हुए उसका निदान बताएंगे। अगर लगे कि समस्या बहुत गहरी है या बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने पास वाले जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं उनसे भी मिलने की व्यवस्था या आपको सहायता करेंगे उसमें।
2: सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
0: धन्यवाद
1: जी। सितारे जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा और अभी आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इस वर्ष की थीम के बारे में।
0: जी, तो चेंजिंग द नैरेटिव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस जो टॉपिक है जैसे मेंटल हेल्थ सुसाइड है इस पर बात करें, इसके कलंक के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, इस पर खुलकर बात करें क्योंकि जब इन पर बात नहीं होगा, खुल के लोग सामने नहीं आएंगे तो हम बीमारी के बारे में जानेंगे नहीं, उस विषय के बारे में जानेंगे नहीं और इस पर बात नहीं करने पर जो आने वाले जनरेशन्स हैं उसको भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ बात नहीं करना, इस बार का थीम के हिसाब से हमको अपनी भाषा, अपनी मतलब इसके प्रति जो सुसाइड है इसके प्रति हमारी धारणाएं को बदलना भी है, इसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम को या जो थीम को रखा गया है। एक मैं थोड़ा सा साझा करूँगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है विश्व लेवल पे, WHO के लेवल पे, क्योंकि WHO के डाटा के हिसाब से, 2021 का डाटा है, उसके हिसाब से 727,000 लोग हर साल

0: मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें अगर हिसाब करें तो 43 सेकेंड्स में एक मौत होता है, सुसाइड होता है।
1: जी
0: और अगर हमारे देश का अगर डाटा आप देखें तो 2019 में 1,39,000 था डेथ, और वो बढ़ के आज 2023 जो रिसेंट वाला है वो 1,71,000 डेथ बढ़ गया है। तो लगभग लगभग 22% का उछाल है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि 22% का देश में अगर सुसाइड पर उछाल हो जाए
1: जी
0: तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी बहुत ही
0: दूसरा
1: चिंताजनक विषय है
0: जी
1: सर। और हाँ, यानी हमें सोच और बातचीत का तरीका बदलना है, चुप्पी या डर की जगह समझदारी और समय पर सहयोग को अपनाना भी है। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन और
0: नमस्कार
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: श्री विद्या जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा
1: जी
2: हूँ।
1: धर्मवीर
2: डॉक्टर
1: जी, अपना
2: नमस्कार।
1: प्रश्न पूछिए।
0: नमस्कार।
2: और डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा है समाज में ये मानसिक रोग जो होता है, ये वंशागत भी देखा गया है क्या? जब या माँ या बाप में अगर कोई देखा जाता है कि कमजोरी है मानसिक,
0: जी
2: पर वो अपने घर घरेलू काम पूरे कर लेते हैं, संसारिक समय अपने परिवार में ठीक से रहते हैं, फिर भी उनका, और एक जगह हमने ये देखा कि वो बच्चे उनके उनका बेटा भी उनकी माँ की तरह ही है, कम मतलब अपना बिजनेस भी कर रहा है पर देखने में ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमी है,
0: जी
2: और अदर बच्चों के
0: जी
2: मुकाबले में कि
0: जी
2: उसकी जो क्रिया है, बातचीत का तरीका है, पर बिजनेस ठीक तरह से संभाल लेते हैं, पर उनको समाज में देखा है कि प्रैक्टिकली में उसमें उन्हें
0: जी
2: कमी महसूस होती है। दूसरा
0: जी
2: सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर ऐसे लोग मानसिक रोगी जो होते हैं, कभी कभी समाज में कुछ और दूसरे बच्चों को के लिए या दूसरे समाज में रहने वाले उनके लिए भी कुछ ये लोग खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी, ये भी ऐसी देखा जाता है कि उनको अपनी कंट्रोल नहीं रहता, पागलपन घर से दौरा चढ़ जाता है। और छोटी सी बात यह है कि अगर दिमाग को मजबूत बनाने के लिए मदर को क्या खान पान लेना चाहिए कि जिससे उनका बच्चा हेल्दी मानसिक रोगी ना बने और अच्छा आगे चल के कामयाब
0: तो
2: हो।
0: जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो इसको मैं सबसे लास्ट वाले आखिरी वाले क्वेश्चन से मैं सवाल से मैं शुरू करूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का गर्भ में जब होता है बच्चा, उसको सही रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो चीज़ वो आप कर सकते हैं वो है गर्भ धारण करने से पहले, प्री कंसेप्शन पीरियड बोलते हैं, उससे पहले से ही हस्बैंड और जो वाइफ है उनको लाइफस्टाइल अपना सही रखना है। यानी किसी तरह का नशा से दूर रहना चाहिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, घर का माहौल ठीक होना चाहिए। अगर कोई हस्बैंड नशा करता है तो उसको नशा छुड़ाना चाहिए पहले। जब तक नशा ना छोड़े बच्चा प्लान करने का बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा, गर्भ में जब बच्चे का मस्तिष्क डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, उस समय हमको ये ध्यान रखना है कि उसके खान पान में, न्यूट्रिशन में जो, और रेगुलर तरीके से डॉक्टर के पास जाए ताकि एनीमिया, फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी को पूरा करने के लिए उनको दवा मिले और हेल्दी खाना पीना हो। तीसरा चीज़ है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं होता है तब तक अगर माँ स्ट्रेस में है, किसी कारण से चिंता में है, तो ये बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस केमिकल्स हैं जो बच्चे में बढ़ सकता है, जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकता है। तो पूरे
2: डॉक्टर
0: जी
2: साहब, अब बोलिए, मैं एक चीज और पूछूंगा, प्लीज
0: जी
2: आप
0: इसके
2: बोलिए।
0: बाद आपने बोला कि कई बच्चों में जैसे कई फैमिलीज़ में जिसको मानसिक बीमारी होती है उनमें देखा गया है कि उनके बच्चों में भी दिक्कत होती है। इसका मैं दो तरीके से इसका वो है कि एक है कि जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि किसी के फैमिली में अगर हार्ट की बीमारी चली आ रही है तो उनके बच्चों को रिस्क हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो बट रिस्क हो सकता है कि ये बीमारी उनको हो जाए, और चांसेस तब और बढ़ जाएंगे जब उनको उनका लाइफस्टाइल भी वैसा हो या उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है

0: कई बार जो माता पिता को मानसिक बीमारी होता है और खासकर जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं, तो उनके बच्चों को होने के चांसेस बनिस्पत सिर्फ जिस ज़्यादा होता है, मतलब मानसिक बीमारी होने का कारण, एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, वो खून में कुछ परसेंटेज आपके अंदर बीमारी के वल्नरेबिलिटी या कमजोरी हो सकती है। दूसरा, घर में जो मानसिक बीमार व्यक्ति है, अगर ठीक ना हो तो उसका व्यवहार ऐसा होता है कि उससे प्रभावित हो जाता है उस घर का परिवारजन या बच्चा।
1: डॉक्टर,
0: तो
1: मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप पंत से हैं, तो एक हमारे दिल्ली में जीबी पंत है, तो आप पंत, जीबी पंत दिल्ली के हैं कि आप
0: नहीं,
1: जयपुर से?
0: मैंने काम किया है मैंने, बट दिल्ली में, बट अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ जीबी पंत पोर्ट ब्लेयर में हूँ, श्री विजयपुरम में
1: जी
0: हूँ।
1: जी जी
0: जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद
1: श्री विद्या जी, धन्यवाद।
2: जी। धर्मवीर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आशा करते हैं कि इससे हमारे बाकी श्रोताओं को भी लाभ हुआ होगा। जी डॉक्टर साहब, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, कौन से साल में कितने लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं?
0: नहीं, मैं बात कर रहा था कि सुसाइड्स पे,
2: सुसाइड पे बात कर
0: कि
2: रहे
0: भारत
2: थे।
0: में सुसाइड का जो दर है 22% के ऊपर है। मतलब अगर 2019 के डाटा और 2022 तक का हम डाटा, या 2023 तक का डाटा भी पकड़ें, तो 1,70,000 के ऊपर सुसाइड्स हुए हैं एक साल में।
2: जी
0: तो ये बहुत चिंता का विषय है कि उछाल जो है 22% का है,
2: जी
0: इतना ज़्यादा इतना कम समय में हो गया। दूसरा चीज़ है कि इसमें जो लोगों का मौत हो रहा है, यानी कोई अगर सुसाइड कर ले रहा है तो अपना जीवन पूरा करने से पहले ही लोग अपने आप को
2: खत्म कर
0: हत्या
2: रहे
0: कर दे
2: हैं।
0: रहे हैं
2: जी
0: अपनी।
2: जी
0: तो उसमें से काफ़ी जो मेजर ग्रुप है, यानी अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें,
2: जी
0: 15 से 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज, इस एज में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होता है।
2: जी ऐसा क्यों है
0: तो
2: कि इसी एज में ज्यादा होते हैं?
0: हाँ, वर्ल्ड थर्ड थर्ड लार्जेस्ट होता है। इसका कारण यह है कि जो किशोरावस्था में लोग होते हैं या जो एडल्ट होते हैं,
2: जी
0: इनके लाइफ के चैलेंजेस का शारीरिक विकास, मानसिक विकास
2: जी
0: जो होता है, एक जो दूसरा, जो लोग इस एज ग्रुप में रहते हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं।
2: जी
0: जैसे 15 साल का जो युवा होगा, उसके अंदर इंपल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, उस समय उस उम्र में गुस्सा बहुत हो सकता है,
2: जी
0: उतनी परिपक्वता नहीं हो सकती होती है, उन
2: जी
0: लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं। उस लाइफ में लोग पीयर प्रेशर में नशा करते हैं, ऐसा
2: जी
0: हो सकता है। अब रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है इस उम्र में, और इस उम्र में फैमिली में एडजस्टमेंट होने में उनको दिक्कत होता है,
2: जी
0: पढ़ाई का प्रेशर होता है, और इसी और आगे जाएंगे तो कॉलेज का प्रेशर, उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी का,
2: जी
0: तो ये सारे पड़ाव में स्ट्रेस बहुत होता है।
2: जी
0: इसमें फेलियर्स, लोगों को फेलियर होता है,
2: जी
0: रिलेशनशिप में फेलियर हो सकता है,
2: जी
0: संबंध टूट सकते हैं, दूसरा नौकरी जा सकती है,
2: जी
0: फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, लोन हो सकता है, और एग्ज़ाम में, कॉलेज में अपने भविष्य को लेकर चिंता, ये हो सकता है।
2: जी
0: तो
2: डॉक्टर साहब, आगे हम बात
0: जी
2: करेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार। हेलो
2: नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी,
0: नमस्कार
2: कौन और कहाँ से
1: जी।
2: बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश शिमला से।
0: जी
1: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है। मैंने अक्सर कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि दिन भर जो है काम करते हैं, और क्या बोलते हैं, शायद उनको टेंशन रहता होगा, लेकिन
0: जी
1: ऐसे लोग मैंने देखा है कि रात को जो है जब सोते हैं वो नींद में कुछ बड़बड़ाते हैं, और नींद में कुछ ऐसी बात बोलते हैं। कई बार ऐसा देखा कि नींद में वो चले जाते हैं, कि कई बार पकड़ के लाना पड़ता, तो इसका क्या क्या कारण, इनको कैसे देखा जाता है?
0: कई बार सामान्यतः हम लोग जब रात को दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है, आपने सही बोला कि वो मन में चल रहा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रात को लोग बोलते हैं।
1: जी
0: दूसरा, स्लीप डिसऑर्डर्स में आता है। एक होता है स्लीप टॉकिंग, यानी रात को इंसान जब बड़बड़ाता है, बात करता है, तो उसको सोमनाम्बुलिज्म या स्लीप टॉकिंग बोलते हैं। तो
1: जी
0: इसका फिर उसका असेसमेंट होना चाहिए कि कहीं उसको दूसरी मानसिक समस्या तो नहीं है। तो मानसिक समस्या हल्की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। कई लोगों में ब्रुक्सिज्म होता है। ब्रुक्सिज्म मतलब रात को सोने के बाद दांत काटते हैं, दांत कटकटाते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ जी
0: हाँ, वो और बोलना, ये दोनों प्रॉब्लम जो है स्लीप स्लीप डिसऑर्डर्स में आता है, नींद की परेशानियों में आता है, नींद की बीमारियों में आता है। तो
1: जी
0: इनका जो असेसमेंट होना ज़रूरी है कि उनको असेसमेंट करें, उनका जांच करें, बात करें। जब डॉक्टर के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या टेलीमानस में आप अगर फ़ोन करते हैं,

0: तो आपको दूसरी कोई समस्या है कि नहीं, वो सब जान देखेंगे। कहीं उदासी बेचैनी का कारण तो नहीं है ना? बेचैनी में भी बहुत तरह के बेचैनी के रोग होते हैं, तो कहीं उसमें से कुछ कुछ तो नहीं है। कई बार लोग कैफीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैफीन यानी चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो कैफीन का ज़्यादा सेवन करने पर भी नींद की
1: और इसमें
0: क्वालिटी
1: एक
0: खराब हो
1: बात भी
0: सकती
1: जोड़ना
0: है।
1: चाहता हूँ,
0: जी
1: जैसे कि कई बार ये भी होता है कि नींद में कई बार ऊपर उठता है, कई बार वो रात को बाहर जाता है, कई बार
0: हाँ,
1: उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा
0: चलता
1: रहा
0: भी
1: हूँ।
0: है। तो इसको
1: जी
0: भी,
1: जी
0: इसको बोलते हैं स्लीप वॉकिंग, यानी रात को नींद में चलना। ये भी स्लीप डिसऑर्डर्स में आता है, नींद की बीमारियों में आता है। तो इसके लिए
1: तो
0: भी
1: इसका
0: असेसमेंट, डिटेल असेसमेंट होना ज़रूरी है, किसी डॉक्टर के पास जाके, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाके असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, उसके बाद देखते हैं। इसमें कई बार कुछ जांच करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। जी, धन्यवाद।
2: जी राकेश जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आजकल लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि पढ़ाई, करियर और सामाजिक दबाव बढ़ता जा रहा है, इस तरह के प्रेशर से हम हेल्दी वे में कैसे निपट सकते हैं?
0: जी, आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कोई इंसान अगर ये कहता है कि मुझे मानसिक बीमारी ना ना सही बट मानसिक तनाव नहीं है, तो ये बोलना गलत होगा। क्योंकि आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सबको, कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई का प्रेशर है, ट्यूशन जाने का है, और कोई अगर काम में, अगर ऑफिस में काम करता है तो उसको अपने डेडलाइंस पूरे करने होते हैं। कई बार ऑफिस का माहौल ठीक नहीं होता है, आपके बॉस ठीक नहीं होते हैं, आपके कलीग ठीक नहीं होते हैं जो आपको परेशान करते हैं अननेसेसरी, इसका एक समस्या। दूसरे, ये सब के बीच में आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारी भी उठाना होता है। तो इन सब के बीच में सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, आपका घर आपके ऑफिस से बहुत दूर है,
2: जी
0: वो भी एक स्ट्रेस होता है कि ऑफिस जल्दी पहुँचना है, समय से पहुँचना है।
2: जी
0: तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेस, छोटे बड़े स्ट्रेस के वजह से मानसिक तनाव तो रहता है।
2: जी
0: अब इसमें मानसिक तनाव को हटाने के लिए, हमें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने मानसिक, तो समय चाहिए होता है।
2: जी
0: कई लोगों को समय ही नहीं होता है
2: जी समस्या
0: कि
2: हमें हमें
0: ना
2: समस्या होती है, पर उसका समाधान ना मिलने पर
0: मिलने पर भी, तो
2: स्ट्रेस हो
0: इसके
2: जाता है।
0: हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ बात करें, किससे बात करें, उतना
2: जी
0: समय
2: जी
0: होना चाहिए, अपने एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल को जितना सही रख सकते हैं उतना
2: जी
0: करें। और कई बार तनाव इतना बढ़ जाता है कि तब आपको नींद की दिक्कत, तब आपको बेचैनी, उदासी, ये होना स्वाभाविक है आज के समय में।
2: जी
0: तो
2: डॉक्टर
0: इसीलिए
2: साहब,
0: अगर आप नहीं आ पाते हैं कहीं पे, तो ज़रूर टेलीमानस में फ़ोन करिए, बहुत बिजी हैं,
2: जी
0: 1-44-16 टेलीमानस का नंबर है,
2: जी
0: और लगता है कि बहुत समस्या गहरी है तो आप खुद भी डॉक्टर से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डायरेक्टली परामर्श ले सकते हैं। तो आपका जो भी समस्या है उसको गोपनीय रखा जाता है, जैसे कि बाकी ब्रांचेस में होता है, मेडिसिन, सर्जरी,
2: जी
0: है
2: जी
0: ना, कोई भी पेशेंट का डिटेल या वो किसी और से साझा नहीं किया जाता है।
2: जी जी
0: ठीक है
2: टेलीमानस
0: जी,
2: जी। डॉक्टर साहब, मोबाइल और सोशल मीडिया के बिना कोई काम नहीं चल रहा है आजकल, देखा गया है। तो ऐसे में क्या सोशल मीडिया का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? सोशल
0: जी।
2: मीडिया का यूज़ कैसे करें जिससे आगे चलकर किसी को कोई परेशानी ना हो?
0: इसको अभी बीमारी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, इंटरनेट एंड गेमिंग डिसऑर्डर। बहुत लोग इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत गेम खेलते हैं, खासकर पैंडेमिक यानी कोविड के बाद से बहुत बच्चों को अपने घर पे मोबाइल देखना, मतलब मोबाइल में काम करना पड़ा। बाकी लोग भी खाली समय के वजह से मोबाइल में ही लगे थे, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते थे। ये करते करते उनका स्क्रीन टाइम दिन से दिन में कहीं कहाँ 2 घंटे से 14 घंटे या 10 घंटे हो गया, उनको पता ही नहीं चला। हमारे क्लिनिक्स में हम लगभग बहुत कॉमनली देखते हैं कि जिनको उदासी, बेचैनी या चिड़चिड़ापन, बहुत तरह के समस्या से लोग आते हैं, खासकर बच्चे, उनमें स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका लगभग लगभग दिन का 1/3 हिस्सा मोबाइल में चला जाता है। और ये पाया गया है कि जो बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो उनमें कई तरह की मानसिक समस्याएं होती है, जैसे सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, उदासी कम उदासी होना, फोकस करने में दिक्कत होना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होना पढ़ाई में, सोशल रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना, सोशल सिचुएशंस को, जहाँ सामाजिक कार्यक्रम होता है, जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ जाने में हिचकिचाहट होना, तो ये सब

0: बहुत स्वाभाविक है
1: जी
0: ये। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को, इवन जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट हैं, उनमें भी ये समस्या देखी जा रही है।
1: जी डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो, गुड
1: हेलो
2: मॉर्निंग मैम
1: जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
2: जी, मैं शादीपुर से रेणु बोल रही हूँ।
1: जी रेणु जी, डॉक्टर साहब
0: रेणु जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल पूछिए।
2: जी नमस्कार सर। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिनों मैं थोड़ी टेंशन में थी,
0: जी
2: हस्बैंड बीमार थे मेरे, और
0: जी
2: उसके बाद फिर अचानक से क्या होता है, मैं हॉस्पिटल से लौट कर जब आती हूँ तो मुझे नींद सर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। पहली बात तो
0: जी
2: जैसे अचानक से मैं रात को सोती भी हूँ, जैसे 10 बजे सोती भी हूँ तो 12, 12:30 या 1, 2 बजे मेरी नींद जो है खुल जाती है। फिर कुछ बातें जो है मुझे मेरे माइंड में चलता रहता है, जैसे किसी से बात हो गई या फिर कुछ और चीज़ है वो चलती रहती है, हाफ एन आवर या 1 आवर तक चलती रहती है। उसके बाद मैं मतलब अपने ही समाधान ढूंढती रहती हूँ, सोचती
0: जी
2: रहती हूँ। उसके बाद फिर नींद हो जाता है सर, फिर नींद
0: जी
2: आता है मुझे,
0: जी
2: लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है।
0: जी
2: जी
0: दो ये बहुत स्वाभाविक, मतलब कॉमन सिचुएशंस हैं जहाँ पे कोई समस्या है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। मतलब कोई लाइफ का जो स्ट्रेंथ है, वो हो सकता है कि आपका कोई स्टूडेंट है तो उसका एग्ज़ाम आ रहा हो, किसी को मिलन जाना हो, किसी का घर चेंज हो गया, किसी के घर में कोई बीमार है, तो ऐसे समय में चिंता होना, नींद खराब होना स्वाभाविक है। और दूसरा चीज़ इसमें सबसे पहले हम जो कर सकते हैं, वो है अपना स्लीप हाइजीन ठीक रखना। जैसे हाथ धोने का, साफ़ सफाई का हाइजीन होता है, वैसे ही आपको स्लीप हाइजीन भी होता है। अपना बेड साफ रखें, समय से सोए, हैबिट रखें, 10:30 बजे सो रहे हैं तो 10:30 बजे सो जाइए, 11 बजे से पहले सोने की आप कोशिश करिए। मतलब इसको सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सोना कहते हैं। दूसरा, सोने से पहले अगर आपको नींद की परेशानी है, तो कॉफ़ी, कैफीन, तंबाकू, जर्दा, खैनी, ये सबसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। कई बार गर्म पानी से नहाने से, गुनगुना गर्म पानी से नहाने से नींद आ जाता है, अच्छा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। कई लोगों को गर्म दूध पीने से भी अच्छा नींद आता है, और कुछ लोगों को शाम को वॉकिंग करने का हैबिट होता है। बट 7 बजे के बाद बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। कई लोग दिन में सो जाते हैं तो रात को नींद आने में परेशानी होती है, तो ये पहले कर लीजिए। अगर इसमें भी ठीक ना हो, रात को सोते समय आप सोने के 1 घंटा पहले जो अपना बहुत तेज़ रोशनी है उसको कम कर लें, या रूम में वार्म लाइट लगा सकते हैं 3 वॉट का, उससे इंटेंसिटी कम हो जाता है। मोबाइल वगैरह सोने के 1 घंटा पहले बंद कर दें, ना देखें, कोई लाउड म्यूज़िक या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करें। जब सो जाए तो सोने के समय जगह में रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, बहुत गर्म या शोर शराब अगल बगल नहीं होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो परामर्श लें, कुछ दिन के लिए आपको असेसमेंट करके कुछ समय के लिए दवाई दे सकते हैं, जो आपका रिदम ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। उसके बाद आप धीरे धीरे दवाई बंद हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब अब
2: जी
1: समय हो चला है और अब अंत
0: थैंक यू
1: में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और एक दूसरे के सहयोग के संबंध में इन शॉर्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मानसिक पीड़ा को छिपाना नहीं चाहिए, साझा करना चाहिए। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, ये साहस दर्शाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोगों को समस्या है ज़िंदगी में, कोई भी समस्या, उसके लिए सॉल्यूशन अप्रोच करें कि इसको कैसे ठीक करें, किसको हम अप्रोच करें, किससे मिलें, ताकि हमारी समस्या का निदान हो। कोई भी समस्या को घर बना, उसको अपने अंदर बनाए ना रखें।
1: जी जी डॉक्टर कुशाल जी, आज हमारे साथ उपस्थित रहकर इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: और आप सभी श्रोताओं का भी जिन्होंने हमें कॉल किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं आइए हम जागरूक बने, एक दूसरे को समझें, सहयोग करें और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। विषय था मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहयोग। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुशाल कुमार वैद्य, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, जीबी पंत हॉस्पिटल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्री विद्या, तकनीकी सहयोग दिया हिमांजलि ओझा और सुभाष दास ने, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रकाश। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह

0: हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
4: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
5: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
4: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।

0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और

0: थी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत इस समय आप सुन रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में चंद गज़लें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में चंद गज़लों का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शोर से। आवाज़ें हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर की। इस गीत को लिखा राजकवि इंद्रजीत सिंह ने और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, ये है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म का नाम था मधुमती और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने।
1: कह दूँ तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये है श्रोताओं दीवार फिल्म का गीत।

श्रोताओं, अभी आपने गंगा जमुना फिल्म का एक गीत सुना, हेमंत कुमार और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से सजाया था नौशाद ने।

ये है अंकुश फिल्म का गीत। अशोक खोसला और साथियों की आवाजों में अभिलाष के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया कुलदीप सिंह ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना जीने की राह फिल्म का एक गीत। इस गीत की गायिका थी लता मंगेशकर, बोल आनंद बख्शी के थे। और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वॉयलिन पर M नागराज और मृदंगम पर AV आनंद ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए MS शीला का कर्नाटक शैली में गाया राग मोहनम, जो आदिताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा की है।

0: वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत आपने सुना MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर संगति की थी M नागराज ने, AV आनंद ने मृदंगम पर एवं घटम पर संगति की थी K वेंकट राम ने। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का, और सुनिए पहला गीत जो है रंग दे बसंती फिल्म से। गायक कलाकार है नरेश अय्यर और मोहम्मद।

0: बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत आपने सुना MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर संगति की थी M नागराज ने, AV आनंद ने मृदंगम पर एवं घटम पर संगति की थी K वेंकट राम ने। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का, और सुनिए पहला गीत जो है रंग दे बसंती फिल्म से। गायक कलाकार है नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत दिए हैं AR रहमान ने।

श्रोताओं, अब सुनते हैं शान और आमिर खान के आवाज़ों में तारे ज़मीन पर फिल्म का यह गीत। इस गीत को शुरू में पिरोया है शंकर ईशान लॉय ने।

श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं गुलजार के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत दिए हैं विशाल भरद्वाज ने, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। फिल्म का नाम है इश्किया।

अब आगे थ्री इडियट फिल्म का यह गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, संगीत निर्देशक है शांतनु मोइत्रा और गायक कलाकार हैं सोनू निगम और स्वानंद किरकिरे। इस गीत का आनंद लीजिए।

0: श्रोताओं, हम पुनः लौटेंगे इस कार्यक्रम में। एक लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम कशिश का। अब सुनिए सलीम मर्चेंट के आवाज़ों में यह गीत। गीतकार और संगीतकार है हनीफ शेख। फिल्म का नाम है पाठशाला।

लीजिए सुनिए समीर के लिखे बोल और शंकर ईशान लोय के संगीत निर्देशन में यह गीत। फिल्म का नाम है हाउसफुल, गायक कलाकार हैं शब्बीर कुमार और सुनिधि चौहान।

अब सुनिए रावण फिल्म से यह गीत, जिसे गाया है रेखा भरद्वाज और जावेद अली ने, बोल है गुलजार के, गीत को सुरों में पिरोया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, के और सुनिधि चौहान के आवाज़ों में पेश है अगला गीत। गीतकार है इरशाद कामिल, फिल्म है खट्टा मीठा।

श्रोताओ, अब सुनते हैं हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में मिलेंगे मिलेंगे फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओ, अब सुनिए वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से यह गीत, जिसे गाया है मोहित चौहान ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत दिए हैं प्रीतम ने।

श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं मीका और चिन्मयी की आवाज़ों में लम्हा फिल्म का यह गीत। गीतकार है सैयद कादरी और संगीतकार है मिथुन। लीजिए, आनंद लीजिए।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, सुनते हैं गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत फिल्मी गीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म से, जिसे गाया है आदित्य नारायण ने। इसके संगीतकार एवं गीतकार है आनंद राज आनंद।

अब सुनिए विनोद राठौड़ और आशा भोसले की आवाज़ों में यह गीत। गीतकार है जफर गोरखपुरी, संगीत दिए है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। चलिए अब सुनते हैं देव कोहली और दलेर मेहंदी के लिखे इस गीत को, जिसे गाया है दलेर मेहंदी, आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है खौफ, संगीत दिए हैं अनु मलिक ने। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए।

श्रोताओ, अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं तक्षक फिल्म का यह गीत, जिसे शुरू में पिरोया है A.R. रहमान ने, गीतकार हैं महबूब और गायक कलाकार हैं आशा भोसले।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन का। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएश यार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएश यार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक रॉय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवाभाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवाभाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस that India has for its teachers. On the occasion of National Teachers Day, from the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaib Yar Khan mentioned, that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shwez mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers, and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing, and he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced, and this has to be

0: channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot district in erstwhile Madras presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day." Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगमगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है।

0: कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रसाद करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार,
2: राष्ट्रपति
1: ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she is being loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: ये अत्यंत गरिमामय दृश्य है। भारत के राष्ट्रपति इस वक्त

0: इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए,
1: महोदय आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित है और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी,
2: इस पुण्य अवसर
0: शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार,
2: पहले 24 पुरस्कार विजेताओं पर हम एक
0: देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्ड।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और

0: फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया, सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR, रोबोटिक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिश स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यालय

0: खेती को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि
3: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन होम टेलीफिल्म वॉज प्लेड एट विज्ञान भवन एंड वी कैन सी दैट द Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Union Minister of State for Education, Shri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Shri Divyendu Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
4: And now the teacher has come, which everyone was waiting for. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब,
4: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: नाउ श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
2: सुषमा तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग ऑफ सिक्किम
2: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।
3: Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teacher Award 2026.
2: West Bengal.
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को

0: सम्मानित किया जा रहा है।
1: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
0: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: लालनुन मोई मिजोरम।
2: फ्रॉम मिजोरम इज लालनुन मावी। एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
1: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
2: राष्ट्रपति जी and Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
1: Manjuri V Mahajan, Himachal Pradesh.
0: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjuri ji Mahajan Maditi Rashtrapati ke samaksh apna puraskar lene ke liye bade utsah aur garv ke sath aage badhti hui Maditi Rashtrapati
1: J Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
0: Aur ab Andaman Nicobar आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।
2: रिसीविंग द अवार्ड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर जे प्रकाश राव द टीचर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दिस इज इंडीड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द टीचर्स who are here at the
1: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
2: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
0: Aur ab Bihar ki Khushbu Kumari Maraniya Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue
1: Archana Shukla, Madhya Pradesh.
2: And from Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati ji for her work especially on innovation.
1: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
2: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
2: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
2: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
0: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
2: फ्रॉम पुदुचेरी मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
1: महादेव हनुमंत शिंदे, गोवा।
0: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: Wanglim Bam Govind Singh, Manipur.
2: And from the land of jewels, Manipur is Wanglim Bam Govind Singh.
1: Shri Prasad Arvind Tingare, Sainik School.
2: From Sainik School, Shri Prasad Arvind Tingare receives the National Teachers Award from the Honorable
1: Sangeeta
2: President.
1: Yadav, Central Board of Secondary Education.
0: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maraniya Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
1: हैं। मोहम्मद जफर आलम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल।
0: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
1: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय।
2: एंड नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज बीन एस्कॉर्टेड टू द डेस अलोंग विद द Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayan Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
0: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
3: महाराष्ट्र के कैच थारो रोड स्थित निवासी माध्यमिक
2: विद्यालय
3: नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से

0: उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई, उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय

0: कमाल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरदराज के विद्यार्थियों तक पहुंचाई। उनके नवाचार, आईसीटी आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनएफआर में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाई कोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाई कोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना

0: based pedagogy, Abacus Mathematics aur environmental projects ke zariye seekhne ko aanandadayak aur samaveshi banaya. Unke margdarshan mein grameen vidyarthiyon ne Pratibha Karanji jaise state cultural platforms aur Inspire jaise national science platforms par safalta hasil ki, jiske liye Sushri Ratna Kumari S ko Rashtriya Shikshak Puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai.
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया. शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया. उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है. उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की. डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा. शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया. उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉप आउट समाप्त हुए. उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जन

0: जातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों एवं दीक्षाई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
2: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
3: गतिविधियों को। कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर
1: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक गुजरात।
3: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक एंड ही इज नोन फॉर हिज इनोवेशंस 7DVR लैब्स आईसीटी एंड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड
1: मोहम्मद मुस्तफा कमाल
3: पार्टिसिपेटेड इन इसरो कॉम्पिटिशन।
2: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही है।
3: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who has worked for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools for education.
1: Gabar Singh Bisht, Uttarakhand.
3: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
1: module. Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalay Sangathan.
3: From Kendriya Vidyalay Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
1: Palash Chaudhary, West Bengal.
3: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
1: Pushpa
3: food
1: Prasad,
3: for education.
1: Bihar.
2: और अब बिहार से पुष्पा प्रसाद अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष पूरे उत्साह और
1: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली।
3: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली पूर्णिमा पटेल receives the award from the Honorable President
1: Dr.
3: of India.
1: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
2: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar praapt kar rahe hain. Mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi
1: Murmu. Ratna Kumari S, Karnataka.
3: From Karnataka, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
1: Mohammed
3: of Ayaz children.
1: Mohammad Ayaz Rehna, Jammu and Kashmir.
2: Aur ab Jammu and Kashmir se Mohammad एयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष।
1: अनिल कौशिक हरियाणा।
3: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
1: रंजन देवनाथ त्रिपुरा।
2: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
1: शालिनी कुशवाहा उत्तर प्रदेश।
2: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए।
1: थंगराज एम तमिलनाडु।
3: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.

0: उत्तर गुलाटी राजस्थान।
1: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से उन्होंने नमस्कार किया, झुककर माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में
0: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड।
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन। हियर इज रिसीविंग
0: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropout from his school and
0: his also
2: larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Vasantrao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati
0: Ji. Rajesh Badaloi, Assam.
1: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain. इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
0: राधा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
1: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश।
0: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
2: महोदय। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर देवश्री मुखर्जी हैव नाउ टेकन देयर सीट्स ऑन द डेस एंड
1: विद्यार्थी
2: के ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कन्फर अवार्ड्स टू टीचर्स एंड to the institutes who have worked in higher education and now telephone
3: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai grameen kshetron se judkar ve vidyarthiyon ko awas school avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai vastukala shikshan ke liye professor avlokita agrawal ko rashtriya shikshak puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: मुंबई के IIT बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागॉजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एचएस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिली मोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल EV विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026

0: सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्क प्लेस रेडिनेस, कम्युनिकेशन, एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, बार और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: ये और शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
2: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
3: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने
2: वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
4: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर

0: Kirti Chandra Sahu, and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola.
2: Or Professor Vinay Chamola, जिन्होंने electrical और electronics engineering के क्षेत्र में काम किया है. B.Sc. Plani से
1: Dr. Srikant Gulapudi, IIT Bhubaneswar.
0: From IIT Bhubaneswar, Dr. Srikant Gulapudi, who works in metallurgical engineering,
1: Dr. Mithun
2: Radhakrishnan, जो कि chemical engineer है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है IIT.
1: Professor Saurabh Datta, IISER Bhopal.
0: From IISER Bhopal, Professor Saurabh Datta receives the award from Honorable Rashtrapati.
1: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए Professor Vikram Vishal को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है.
1: Dr. Jaraj Singh Sarvaiya, NFSU Gandhinagar.
0: For his work in forensic sciences, Dr. Jaraj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
0: University, Gujarat.
1: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
2: रसायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से है.
1: Dr. Manisha Nigam, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
0: Hemvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
1: Dr. Amar Mohan Rao.
2: अगला पुरस्कार Dr. Amar Mohan Rao को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से.
1: डॉक्टर अरुण बाबू, एम्स मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश.
0: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स, डॉक्टर अरुण बाबू, ही हैज वर्कड especially on pediatric treatment and innovation and has
1: Manipur University
0: published 400 scientific publications. Dr. P. Lilavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri Gans.
1: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
2: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
0: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
0: and Communication
1: Shivani
0: receives the award
1: Karnataka
0: from the Honorable
1: University,
0: President
1: Bangalore.
0: Of India.
2: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से.
1: प्रोफेसर राजीव चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
0: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इज फ्रॉम द पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
2: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से.
1: डॉक्टर शशिकला S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
0: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Shashikala S. receives the award for a work in electronics
1: Kanan
0: and electrical engineering.
2: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु.
1: डॉक्टर सांदीपन प्रहलाद नरोटे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर.
0: From Maharashtra, Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department receives the award from the Honorable President of
1: Dr.
0: India.
1: Dr. Harish A., Government
0: IIT, Killing and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
0: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
0: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT, Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
0: Receives the award
1: Patel,
0: from the Honorable
1: Rajesh
0: President.
1: Bhai, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति.
1: हीरा लाल शर्मा, Government Industrial Training Institute, Chomu.
0: And he has worked in the field of refrigeration and his special
1: Archana
0: work
1: Rakesh
0: is on troubleshooting
1: Yadav,
0: for
1: Government
0: ACs.
1: Industrial Training Institute, Adivasi, Shriambakeshwar, Nasik.
0: And she works on fashion design.
1: Rina Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
0: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.

0: Somain Pandit, Tollygunj Government ITI.
1: Somain Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
0: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
1: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
0: Sanjay Kumar, NSTI, Ludhiana.
2: क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा.
0: ज्योतिबाला राठौर, NSTIW, इंदौर.
1: She works on skilling and empowerment of her students from
0: Sri Lanka. Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool Indore. Room and Training Center, Bhubaneswar.
1: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her death, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति का स्वागत.
1: स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी. आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ. 20वीं सदी

के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दात विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों की सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के

0: महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना, पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: से निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है. राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है. श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है. उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन. इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का यह विशेष प्रसारण संपन्न होता है. इस प्रसारण को आप तक पहुंचा

0: शिक्षकों द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा हैं। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
2: You are listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर

0: राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award 2026 in New Delhi, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms.
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while

श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आपने लता मंगेशकर के गाए चंद गीतों का आनंद लिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब लुत्फ़ उठाइए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको आपके ही पसंद के गीत सुनवाते हैं। श्रोताओं, अपने पसंद के गाने सुनने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पता, गाने के बोल और फिल्म का नाम लिखकर पैगाम कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुने, 9474234000। आइए लेते हैं पहला पैगाम, जिसे भेजा है MLV रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, SK पप्पी। ये सुनना चाहते हैं संजोग फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। सुनिए।

अगला पैगाम भेजा है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे ने। ये सुनना चाहते हैं सात रंग के सपने फिल्म का यह गीत, जिसे आवाज़ दिया है

0: श्रोताओं, लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित, कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। महाराष्ट्र से अगला पैगाम आंसू बन गए फूल के इस गीत को सुनने के लिए किया है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव प्रगेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल ने। इस गीत के गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले। श्रोताओं, गीत का आनंद लें।

श्रोताओं, अगला पैगाम भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा, परिहर। ये सुनना चाहते हैं मधुमती फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए।

चलिए श्रोताओं, लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम पैगाम, जिसे भेजा है टोरोवाल गांव से, जिला नवांशहर, पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी ने। ये सुनना चाहते हैं दो बदन फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर

0: से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
0: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर

0: AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
3: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
4: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग

0: ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट के इस स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान निकोबार के लगभग सभी जिलों में मध्यम गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती
1: FM श्री विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

कभी हमने नहीं।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक के तहत कल हो ना हो जब वी मेट, ओम शांति ओम, रेस, तुम मिले, वेक अप सेड, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, गब्बर इज बैक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुमसे अच्छा कौन है और जाने मन फिल्म के गीत। 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्मी गीत। श्रोताओं, सैनिक जो धूप छाव बारिश गर्मी सभी परिस्थिति में हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन वीर जवानों को हमारा कोटि कोटि नमन है और उन्हीं के लिए हम यह कार्यक्रम समर्पित करते हैं। आइए सुनते हैं पहला गीत क्रांति फिल्म से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, मन्ना डे, नीनिन और मुकेश के आवाज़ में। लीजिए सुनिए यह गीत।

श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के सुरीली आवाजों में रॉकी फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, सुनिए आक्रमण फिल्म का यह गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने। गीतकार है आनंद बख्शी। इस गीत को शुरू में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला में रखरे हमांग इंग्रे तका इंगम मीडियम वे 438.6 मीटर हे इंगम 684 किलोहर्ट्स लगती हांग इन रमांगलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम तहांग

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहाँ हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दें, और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं, और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227 0।

0: 9251522739. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है? इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए। हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 आप युवाणी कार्यक्रम सुन सकेंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। संध्या 6 किसानवाणी कार्यक्रम में शिक्षक कुमारी विधि सिंह के साथ की गई बातचीत सुनेंगे, ज्ञान संस्कार और भविष्य का शिल्पकार। आमने सामने कार्यक्रम 6:30 पर श्री अनिल सक्सेना की लिखी झलकी आप सुन पाएंगे, क्या करें 6:45 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम, वजन सूचनाएं आप सुनेंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है और शिक्षक दिवस पर चर्चा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में विद्वान वी काली प्रसाद बाबू का मृदंगम और विट्ठल जय राजपुरा का पखावज वादन आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे एमरेथस की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा नजर शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत 7:30 पर। अभिलाष तिवारी के साथ ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे, विषय रहेगा हुनर से आत्मनिर्भरता तक, और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और जगजीत सिंह। बाल जगत कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण के शिल्पकार, विषय पर जानकारी और साक्षरता दिवस पर चर्चा आप सुनेंगे सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप संजीव अभ्यंकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन पाएंगे। सुबह 10:00 हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 मेरी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे, अतिथि होंगे श्री उदय नारायण, गजल गायक होंगे जगजीत सिंह 11:30 पर।

दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में आप सुपरहिट गीत सुनेंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में रूपक सुनवाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर फनकार होंगे तलक अजीज़ और गुलाम अली। घर संसार कार्यक्रम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी, दोपहर 3 बजे एल्बम टाइम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप भक्ति गीत सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम 4:30 पर आप सुनेंगे लम्हे। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण, बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे 5:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम महिलाओं के लिए होगा संगीत संगनी संध्या 6 बजे। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकगीत आप सुनेंगे। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा। 7:20 पर दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद लेंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम तथा रात्रि 10 बजे रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में NR प्रशांत का कर्नाटक शैली में गायन आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म बागबान से। गायक कलाकार है अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक। गीत रचना समीर की तथा संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

लीजिए, अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना, संगीत अनु मलिक का है तथा फिल्म का नाम है हम तो मोहब्बत करेगा।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हेमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की गीत रचना। गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म है बर्दाश्त।
1: कहाँ मिलती है?

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बंगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হার্জ থেকে।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को बबीता का
6: और सुखमीत का नमस्कार।
5: सुखमीत, हमेशा की तरह कार्यक्रम का शुभारंभ हम आज के खूबसूरत विचार से करें।
6: बिल्कुल बबीता,
5: और हमारा आज का शुभ विचार क्या है?
6: बबीता कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कठिनाई नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आज जो परेशानी आपको रुला रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
5: कहने का मतलब सुखमीत, बस धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। विश्वास रखिए, सही समय आने पर सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। तो सुखमीत, हम समझते हैं हमारे इस विचार से हमारे किसान साथी सहमत होंगे।
6: बिल्कुल, और ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन में सत्कर्म करें।
5: साथियों, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हुए फसल के नुकसान पर बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमे की राशि नहीं प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8,800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा, जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। सभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसमें अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार एवं किश्तकार किसान भी शामिल है, परंतु बीमित फसलों और भूमि के लिए किसानों का बीमा योग्य होना अनिवार्य है। सभी किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फूड क्रॉप, ऑयल सीड, एनुअल कमर्शियल, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप, पेरिनियल हॉर्टिकल्चर एवं कमर्शियल क्रॉप शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यही उद्देश्य है कि भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान पर सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को खेती में रुचि बनाए रखना

तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा देना है और भारत को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है। यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है।

0: किसान साथियों, अभी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और ये जानकारी जो है बबीता, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी है और बहुत से किसान इसका फायदा भी उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की कई सारी योजनाएं हमारे किसान साथियों के लिए ही चलाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इसका लाभ अवश्य ही उठाएंगे। सुखमीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, धनिया के बीजों को बोने से पहले क्या पानी में भिगो कर रखना चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को बताना है। साथियों, प्रश्न के उत्तर खोजते रहे, कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 5 सितंबर है, आज का दिन बहुत ही खास है
0: और आज के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: जी हाँ, ये दिन देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
0: और बबीता, इस दिन को याद करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक का हमारे जीवन में भगवान से भी ऊंचा स्थान माना गया है, और जहाँ तक हमारे गुरुओं की उपलब्धियों का सवाल है, तो आज हम जो भी कुछ हैं उन्हीं की वजह से हैं। और यही नहीं बबीता, हमारा तो ये कहना है कि हमारे जीवन भर में वो तमाम लोग जिन्होंने हमें किसी भी रूप में कुछ अच्छा मार्गदर्शन या कोई राह बताई हो, वो सभी हमारे लिए गुरु तुल्य होते हैं, और फिर उम्र में वो चाहे हमसे छोटे भी क्यों ना हो।
1: बिल्कुल, और सुखमित, शिक्षक हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि सही और गलत की भी पहचान कराते हैं और जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाते हैं।
0: तो ऐसे ही भगवान तुल्य शिक्षकों को आज हम नमन करते हैं और इसी संदर्भ में अपने किसान साथियों को एक वार्ता सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल, ज्ञान संस्कार और भविष्य का शिल्पकार शिक्षक।
0: तो चलिए साथियों, सुनिए ये वार्ता, और वार्ताकार हैं कुमारी विधि सिंह।

आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो सुन रहे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से अपने मन की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। जब मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया राष्ट्र निर्माण के असली शिल्पकार शिक्षक, तो मेरे मन में सबसे पहले मेरे आंखों के सामने तो बस एक कक्षा आ गई, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ किताबें, कई उत्सुक आंखें और उनके सामने खड़ा एक शिक्षक। क्योंकि शायद राष्ट्र का निर्माण वहीं से शुरू होता है जहां एक शिक्षक किसी बच्चे के भीतर सीखने की पहली जिज्ञासा जगाता है। आज मैं चिकित्सा के अंतिम वर्ष में हूँ, अस्पताल में रोगियों से मिलती हूँ, उनके लक्षण समझती हूँ, बीमारियों का निदान सीखती हूँ और धीरे धीरे उस जिम्मेदारी को समझ रही हूँ जिसे एक चिकित्सक के कंधों पर रखा जाता है। लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि डॉक्टर बनने की मेरी यात्रा मेडिकल कॉलेज में शुरू नहीं हुई थी, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, मेरे स्कूल की उन कक्षाओं में जहाँ मेरे शिक्षकों ने मुझे सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया बल्कि ये सिखाया कि किसी भी विषय को समझने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, कठिनाई आने पर रुकना नहीं चाहिए और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। बचपन में हमें लगता है कि शिक्षक का काम हमें पढ़ाना है, लेकिन उम्र के साथ साथ समझ आता है कि शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं, दृष्टि देना है। वे हमें केवल ये नहीं बताते कि दुनिया कैसी है बल्कि ये भी सिखाते हैं कि हमें दुनिया को कैसे देखना चाहिए। मेरे स्कूल के शिक्षक मेरे जीवन में इसी तरह की भूमिका निभाते हैं। किसी ने मेरे भीतर अनुशासन पैदा किया, किसी ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया, किसी ने मेरी गलतियों को सुधारने का धैर्य रखा और किसी ने शायद अनजाने में ही मुझे ये विश्वास दिला दिया कि मैं अपने सपनों तक पहुंच सकती हूँ। और एक बच्चे के जीवन में शिक्षक की भूमिका यहीं तक सीमित नहीं होती। स्कूल के शुरुआती वर्षों में शिक्षक अक्सर परिवार के बाद पहला व्यक्ति होता है जिसे बच्चा आदर्श मानता है। हम उनकी बोलने की शैली देखते हैं, उनकी आदतें अपनाते हैं, उनके शब्दों को याद रखते हैं। अगर शिक्षक किसी प्रश्न को महत्व देता है तो विद्यार्थी सीखता है कि जिज्ञासा गलत नहीं है। यानी कई बार शिक्षक अपने शब्दों से

धर्म और अपने आचरण से अधिक शिक्षा देता है। आज शिक्षा का स्वरूप थोड़ा बदल रहा है। हमारे पास इंटरनेट है, डिजिटल कक्षाएं हैं, ऑनलाइन पुस्तकालय है और ऐसी तकनीक है जो कुछ ही क्षणों में दुनिया भर की जानकारी हमारे सामने ला सकती है। एक विद्यार्थी आज किसी भी विषय पर हजारों स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जानकारी उपलब्ध होना और उसका सही अर्थ समझ पाना दोनों अलग बातें हैं। तकनीक हमें उत्तर जरूर दे सकती है, लेकिन ये तय करना कि कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए, किस उत्तर पर विश्वास करना चाहिए और उस ज्ञान का उपयोग किस उद्देश्य से करना चाहिए, ये विवेक हमें शिक्षा से मिलता है और यहाँ शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में शिक्षक केवल जानकारी का माध्यम नहीं है, वे विद्यार्थी का मार्गदर्शक, आलोचनात्मक सोच विकसित करने वाला और सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को केवल बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, उसे सही और गलत का अंतर करना आना चाहिए। और ये बात मैं अपनी चिकित्सा शिक्षा में बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करती हूँ। मेडिकल कॉलेज में हमें प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ सिखाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रोगों के बारे में सिखाते हैं, उपचार के तरीके हमें सिखाते हैं, लेकिन मेरे मेडिकल शिक्षकों ने मुझे किताबों से कहीं आगे की बातें सिखाई हैं। उन्होंने सिखाया कि रोगी हमारे लिए केवल एक केस नहीं है, वह किसी का पिता है, किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी की बेटी है। उनकी बीमारी के साथ उनकी चिंता जुड़ी है, उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी है। इसलिए चिकित्सा में ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक है संवेदनशील होना। एक चिकित्सक को केवल बीमारी पहचानना नहीं आना चाहिए, उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना भी आना चाहिए जो उस बीमारी से गुजर रहा है। स्कूल के शिक्षकों ने मुझे सीखना सिखाया और मेडिकल के शिक्षकों ने मुझे ये समझाया कि इस ज्ञान की जिम्मेदारी क्या होती है। यही शिक्षा की खूबसूरती है। हर शिक्षक हमारे जीवन में एक अलग पड़ाव पर आता है, लेकिन उसकी सीख हमारे भीतर आगे भी चलती रहती है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो अक्सर हमारी चर्चा आर्थिक विकास, विज्ञान, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई उपलब्धियों तक पहुंच जाती है, लेकिन इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मनुष्य। किसी भी देश के पास कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों ना हो, यदि उसका नागरिक जिम्मेदार नहीं है तो वह विकास अधूरा है। किसी देश के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, यदि उसके नागरिकों में संवेदना नहीं है तो वह समृद्धि अधूरी है। और किसी भी देश के पास कितने भी संस्थान क्यों ना हो, यदि उसके युवाओं में विचार करने की क्षमता नहीं है और सही निर्णय लेने का विवेक नहीं है तो उसका भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली भूमिकाओं में से एक है। एक शिक्षक आज जिस विद्यार्थी को पढ़ाता है, हो सकता है उसकी सफलता उसे 10 या 20 साल बाद दिखाई दे, शायद किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में, किसी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक के रूप में, किसी विद्यालय में स्वयं एक शिक्षक के रूप में, या किसी कार्यालय में एक ईमानदार अधिकारी के रूप में, या फिर किसी साधारण से जीवन में एक ऐसे नागरिक के रूप में जो अपने आसपास के लोगों के साथ ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करता है। और शायद शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसकी शिक्षा को प्रभाव हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह धीरे धीरे समाज में फैलता है। आज मैं विशेष रूप से अपने स्कूल के शिक्षकों को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में हमें समझ नहीं आता था कि हमारे लिए उनकी मेहनत कितनी बड़ी है। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि शिक्षक रोज कक्षा में आते हैं, लेकिन उनके आने के पहले पाठ की तैयारी होती है, विद्यार्थियों की अलग अलग क्षमताओं को समझना होता है, उनकी गलतियों को सुधारना होता है, उनकी परेशानियों को सुनना होता है और कई बार एक ही बात को अलग अलग तरीकों से समझाना होता है। हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता। किसी को पढ़ाई जल्दी समझ आती है, किसी को समय लगता है, किसी को बोलने में संकोच होता है, कोई बहुत अधिक प्रश्न पूछता है, और इन सभी विद्यार्थियों के साथ आगे बढ़ना यही शिक्षक का धैर्य है। शायद इसी कारण शिक्षक का काम केवल पढ़ाने का काम नहीं बल्कि लगातार मनुष्य को समझाने का काम भी है। मेरे जीवन में भी ऐसे कई क्षण रहे होंगे जब मेरे किसी शिक्षक की कही हुई बात उस समय साधारण लगी होगी, लेकिन आज उसका अर्थ समझ आता है। किसी परीक्षा से पहले मिला प्रोग्रेशन, किसी गलती पर मिली डांट, किसी उपलब्धि पर मिली छोटी सी शाबाशी, ये सारी बातें उस समय कुछ क्षणों की लगती हैं, लेकिन कई बार उनका प्रभाव वर्षों तक रहता है। और शायद हम विद्यार्थी अपने शिक्षकों को ये बात पर्याप्त रूप से कभी नहीं बता पाते। इसलिए आज शिक्षक

दिवस पर मैं उन सभी शिक्षकों से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके हर विद्यार्थी की आगे की यात्रा आपके बारे में ना हो। हो सकता है आपको ये भी ना याद हो कि आपने वर्षों पहले किसी विद्यार्थी से क्या कहा था, लेकिन संभव है कि वही विद्यार्थी आज भी आपकी किसी सीख को अपने जीवन में साथ लेकर साथ चल रहा हो। आपके शब्द किसी की हिम्मत बने होंगे, आपकी डांट किसी की आदत सुधार रही होगी, आपका विश्वास किसी के सपने को बचा रहा होगा और आपकी शिक्षा किसी के व्यवहार का हिस्सा बन चुकी होगी। शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा प्रमाण पत्र या पुरस्कार में नहीं होती, कभी कभी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह इंसान होता है जो उसके पढ़ाए हुए मूल्यों के साथ जीवन जी रहा होता है। आज आकाशवाणी के माध्यम से मैं उन सभी शिक्षकों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शिक्षक दिवस की एक बार और हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी। उन शिक्षकों को जिन्होंने हमें अक्षरों से परिचित कराया, उन शिक्षकों को जिन्होंने हमारे प्रश्नों को महत्व दिया, उन शिक्षकों को जिन्होंने हमारी गलतियों के बावजूद हम पर विश्वास रखा, और उन गुरुओं को जिन्होंने हमें केवल सफल होने का ही नहीं बल्कि एक अच्छा मनुष्य बनने का भी अर्थ समझाया। आज मैं अपने सभी शिक्षकों को केवल धन्यवाद नहीं बल्कि अपना सम्मान देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां तक पहुँचने में मेरी मेहनत के साथ साथ अनेक हाथों का भी योगदान है जिन्होंने अलग अलग समय पर मुझे दिशा दी। मेरे स्कूल के शिक्षकों ने मेरी नींव रखी और मेरे मेडिकल के शिक्षकों ने मुझे यह सिखाया कि ज्ञान के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। शायद ये किसी भी शिक्षा की अंतिम सार्थकता है कि वह हमें केवल अपने लिए बेहतर बनने का प्रेरणा नहीं देती बल्कि अपने समाज के लिए उपयोगी बनने की इच्छा भी पैदा कर देती है, क्योंकि अंततः एक राष्ट्र केवल अपनी ऊंची इमारतों से महान नहीं बनता, वे महान बनता है अपने नागरिकों के विचारों से, उनके चरित्र से, उनके कर्मों से, और उन विचारों, उन चरित्र और उन कर्मों की पहली रेखाएं खींचने वाला हाथ अक्सर एक शिक्षक का ही होता है। इसलिए राष्ट्र की नींव यदि उसके नागरिक हैं तो उन नागरिकों को गढ़ने वाला वह शिक्षक वास्तव में राष्ट्र निर्माण का एक असली शिल्पकार है। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर देश के प्रत्येक शिक्षक को मेरा सादर नमन। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं अपने सभी शिक्षकों से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, हमारे भीतर कुछ ऐसा छोड़ा है जो हमारी किताबों के खत्म हो जाने के बाद भी हमारे साथ साथ चलता रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।

0: ज्ञान संस्कार और भविष्य का शिल्पकार शिक्षक। किसान भाइयों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी विधि सिंह द्वारा लिखी ये वार्ता सुनी।
1: साथियों, आज का दिन बहुत खास था और इस बारे में अभी आपने सुन भी लिया कि शिक्षक कितना जरूरी होता है जीवन को एक सच्चे और अच्छे भविष्य की राह दिखाने में। सुखमेत कार्यक्रम को हम आगे ले जाने से पहले अपने किसान साथियों को सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: तो चलिए भाइयों, आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: साथियों, इन बातों को हम यहीं विराम देते हैं और चलते हैं मौसम की तरफ, क्योंकि मौसम का रुख रोज़ बदल रहा है। हमारे किसान साथियों को मौसम पर निर्भर होना पड़ता है खेती किसानी के कामों के लिए। आइए ले लेते हैं मौसम पर आधारित ये कृषि परामर्श।
1: अगले दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में 7 से 15 मिलीमीटर तक हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुल वर्षा 56 मिलीमीटर तक रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85 से 88% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 74% के बीच रहने की उम्मीद है और आकाश का आंशिक रूप से बादल युक्त और बादलों से ढके रहने की संभावना है। इस मौसम के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने, युवा पौधों के झुकने और उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ साथ खेतों में रखी कटी हुई उपज खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में 2-3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। बालियां बनने की प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दी जानी चाहिए। यदि पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो नीम तेल 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बागवानी करने वाले किसानों को इस बात का ध्यान रखना है कि समय पर निराई गुड़ाई करें, तत्पश्चात अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद पौधों में उचित वृद्धि एवं राइजोम के विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि कुबड़ के घाव यानी हम सोर के उपचार के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और डाई इथाइल कार्बामाइजीन की गोली दें तथा घाव होने पर घाव पर नीम का तेल और मरहम लगाएं। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि तालाब में मेड़ तथा पानी के प्रवेश एवं निकास संरचनाओं का निरीक्षण करें और मेड़ों को मजबूत और सुरक्षित रखें। यदि पानी की गुणवत्ता उपयुक्त हो तो प्राकृतिक प्लवक उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद को बोरी में भरकर तालाब में रखें। मछलियों की गतिविधियां एवं पानी की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से आहार दें।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मौसम पर आधारित ये कृषि परामर्श सुना, जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी।
1: और बबीता, अब हमें लगता है कि हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे होंगे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का।
0: तो साथियों, आपका इंतजार होता है यहीं पर खत्म। हमने आपसे पूछा था कि धनिया के बीजों को बोने से पहले क्या पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा, लेकिन सही उत्तर हम आपको बता दें कि धनिया के बीजों को बुवाई से पहले 12 घंटे तक भिगोकर रखने से धनिया का अंकुरण अच्छा होता है।
1: भाई, बहुत अच्छी जानकारी है और हमारे किसान साथियों ने जरूर ग्रहण कर ली होगी। लेकिन बबीता, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है,
0: तो अपने किसान साथियों से हम यहीं पर ले लेते हैं अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: श्रोताओं, अभी आप

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आमने सामने के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विषय पर टेली मानस परामर्शदाता डॉक्टर सुमित्रा मंडल के साथ की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रही है हमारी संवाददाता तरन्नुम मोहम्मद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत आमने सामने के आज के संक में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, मुस्कुराता है, लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसके बारे में शायद उसके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते। आज इसी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टेलीमानस की काउंसलर डॉक्टर सुमित्रा मंडल।
2: नमस्कार मैम।
1: आज उनसे जानेंगे कि मानसिक तनाव और भावनात्मक परेशानियों के संकेतों को कैसे पहचाना जाए, किसी अपने की मदद कैसे की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल समय में मदद मांगना क्यों जरूरी है। डॉक्टर सुमित्रा, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: जी, मैं ये बताना चाहूँगी, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है हर सितंबर महीने में हर साल मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। जो हमारा संगठन है WHO एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इन दोनों के संगठन के सहयोग से ये दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य यही है कि आत्महत्या जैसी जो सोच है, आत्महत्या से जो हमारे लोग जो अपनी जान को गंवा रहे हैं, तो पर जो हमारी उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का, एक ही उद्देश्य यही है कि हम इस सोच को बदलें और इस आत्महत्या को जितना हो सके कम कर सके और मानसिक स्वास्थ्य को लेके एक जागरूकता फैला सके लोगों के बीच।
1: जी, इस वर्ष यानी 2026 की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है और यह थीम आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
2: जी, कि जो हमारा आत्महत्या के ऊपर जो हमारी जो सोच है, इस वर्ष का यही थीम है, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड, यानी आत्महत्या पर अपनी दृष्टिकोण, अपनी सोच को बदलना। और ये जो थीम है लगातार 2024, 2025 और 2026 तीन वर्षीय थीम है। हम 3 वर्ष से इसी थीम के ऊपर काम कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं।
1: थीम है चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। आम श्रोताओं के लिए आप सरल शब्दों में बताइए कि आत्महत्या के बारे में बदलती हुई सोच और दृष्टिकोण, जैसा भी आपने कहा, से आखिर क्या मतलब है?
2: जी, मैं ये आम श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी, जो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, इसका मतलब यही है, जैसे हमारी एक सोच रही है आत्महत्या को लेकर कि चुप रहना, आत्महत्या मतलब एक कलंक है समाज में और आत्महत्या के बारे में बात नहीं करते, तो हमारी इस जो सोच है इसको बदलना है। हमें यह दृष्टिकोण अभी लाना है कि इसके ऊपर हम खुलकर बात कर सकें, हम अपनी जो मानसिक तनाव है उसको हम किसी से बातचीत कर हम शेयर करके अपनी जो तनाव को कम कर सकें।
1: अक्सर लोग मानसिक परेशानी या आत्महत्या जैसे विचारों पर बात करने से कतराते हैं, जैसा अभी आपने कहा। ऐसे में क्या खुलकर बातचीत शुरू करना आत्महत्या की रोकथाम में मददगार हो सकता है, या बातचीत किस तरह की होनी चाहिए?
2: जी, जैसे कि मैंने कहा, खुलकर अगर आप अपनी परेशानी को रखते हैं, किसी को बताते हैं, तो आपकी मानसिक तनाव और आपकी जो चिंता है वो कम होती है, और इससे आप एक माहौल क्रिएट करते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद मांगना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, अगर मैंने ये बात किसी से कह दी तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तो मेरा इस थीम के ज़रिए हम यही बताना चाहते हैं कि अपनी सोच को आप बदलें और आप इसके ऊपर बात करें और आप मदद मांगें, और मदद मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक हिम्मत की निशानी है।
1: इसी संदर्भ में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है टेलीमानस।
2: जी हाँ,
1: हमारे श्रोताओं को बताएं कि टेलीमानस क्या है।
2: जी हाँ, जैसे अभी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, भारत सरकार ही नहीं पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस इसे दिया जा रहा है।

0: है, क्योंकि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हमारा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। तो टेलीमानस इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे टेलीमानस मतलब टेली मतलब आप फोन के जरिए या ऑनलाइन
1: जी
0: दूरभाष से आप किसी से संपर्क करेंगे। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, मतलब आपको जो है एक मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, एक हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा ओवर फोन। आप भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य से इस नंबर पर कॉल करके आप हेल्प मांग सकते हो। आप किसी भी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से जुड़ सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो और उसका आप सल्यूशन ले सकते हो कि मैं अपनी तनाव को कैसे कम करूं। और मैं बताना चाहूंगी कि इसका
1: जी
0: नंबर है 14416, टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416, जिसमें आप कॉल करके मदद मांग सकते हो।
1: अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, भावनात्मक परेशानी या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है और उसे तुरंत किसी से बात करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो वह टेलीमानस से किस प्रकार संपर्क करे और किस प्रकार मदद ले?
0: जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, टेलीमानस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मतलब आप अगर किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, किसी परामर्शदाता से नहीं मिल पा रहे हो, आप अपना जो दर्द है किसी को नहीं बताना चाहते, तो आप ऑनलाइन इस नंबर पर कॉल करके, टोल फ्री नंबर 14416 पे कॉल करके आप जुड़ सकते हो। आप अपनी बात को रख सकते हो। और जो हमारे काउंसलर्स है, यहाँ पे जो है टू टायर सिस्टम काम करता है। जैसे फर्स्ट टायर में, फर्स्ट स्टेप में हमारे काउंसलर्स आपसे बात करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और एक काउंसलिंग सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड टायर में जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपीज देंगे, और आपकी जो मनोचिकित्सक जो है,
1: मनोचिकित्सक,
0: मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, उनको कनेक्ट किया जाएगा और आपकी बात उनसे कर दी जाएगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी फैसिलिटी है इसमें। तो ऐसे टेलीमानस काम करता है। और आपकी सारी बात जो है गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त, जो
1: जी
0: कॉन्फिडेंशियल
1: ये
0: रहेगा।
1: ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपसे अगर बात करना चाहे तो उनका जो भी विषय है वो गोपनीय होना चाहिए।
0: जी हाँ, और इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, टेलीमानस जो है 24x7 चालू नंबर है, जिसमें आप 24 घंटे सातों दिन हमसे जुड़ सकते हो और अपनी बात को रख सकते हो, और हम हर दिन आपके साथ हैं और आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।
1: ये बहुत अच्छा माध्यम है टेलीमानस। इसके शुरू करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य होगा?
0: जी हाँ, जो टेलीमानस जो है मैम, 2022 में इसका लॉन्च हुआ था, शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा 2022 में, जब हम कोविड से प्रभावित थे। कोविड
1: जी
0: के टाइम पे हम सब घर पे लॉकडाउन पे बंद थे और हमें कोई माध्यम नहीं था कि हम किसको दिखाएं। अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो हम किसके पास जाएं, किसको अपनी बात को कहें, क्योंकि उस टाइम ऐसी महामारी ऐसे फैल गई थी कि हम बहुत डरे हुए थे और हमें यही नहीं पता था कि हम
1: उस
0: कहाँ
1: समय
0: जाएं,
1: काफी लोग डिप्रेशन में भी थे जो
0: डिप्रेशन में।
1: कंटिन्यू घर के अंदर रहना
0: जी
1: जिनको
0: हाँ
1: पसंद नहीं।
0: जी हाँ, तो
1: जी
0: वो ऐसे बंद हो गए थे तो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भारत सरकार ने सोचा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग जुड़ पाए घर बैठे और अपना हेल्प ले सकें उससे।
1: जी भारत जैसे विविधता वाले देश में भाषा भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है,
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: क्या टेलीमानस की सेवाएं अलग-अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है?
0: टेलीमानस जो है, टेलीमानस में आप कॉल करके भारत के जो भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, और अपनी जो बात है आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में बात करके हमसे बता सकते हैं।
1: इस पूरी व्यवस्था को मार्गदर्शन और विशेषज्ञता देने में भी एक महत्वपूर्ण संस्थान की भूमिका है। टेलीमानस के लिए नोडल मेंटरिंग सेंटर के रूप में कौन-कौन सा शीर्ष संस्थान कार्य करता है?
0: जी हाँ, जैसे टेलीमानस का मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसका जो है स्टार्ट हुआ। एंड ये निमहांस जो
1: जी
0: बैंगलोर
1: निमहांस
0: में
1: बैंगलोर
0: है,
1: में। जी
0: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल
1: मेंटल
0: हेल्थ
1: हेल्थ।
0: एंड न्यूरो साइंस, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा हम हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है
1: तो
0: इसमें।
1: आप जब ऑनलाइन बात करते हैं तो वहां के डॉक्टर्स और काउंसलर्स भी कनेक्ट होते हैं?
0: जी हाँ, जब कभी यहाँ पे अक्सर होता है कि आप कॉल कर रहे हो किसी नंबर पे, आपका कॉल कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है, बिजी बताता है। जैसे हमारे जो परामर्शदाता है, काउंसलर्स है, वो बिजी रहते हैं। कभी कभी हम दूसरे व्यक्ति के साथ अगर बिजी हैं तो जो है आपका कॉल अगर नहीं कनेक्ट करता है, तो ये जो मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है निमहांस, ये जो है आपका कॉल किसी पड़ोसी राज्य जैसे वेस्ट बंगाल में आपकी कॉल कनेक्ट कर दी जाएगी और उनसे
1: अच्छा
0: आपकी बात होगी। तो आसानी से आप

0: अपने लैंग्वेज में बात कर सकते
1: तो
0: हो।
1: जरूरी ये नहीं है कि अगर हम अंडमान के हैं तो अंडमान का ही काउंसलर आपको अटेंड कर रहा है,
0: जरूरी
1: ऐसे
0: नहीं,
1: नहीं है।
0: कहीं भी
1: अच्छा
0: आप, वही मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप भारत में किसी भी कोने में, किसी भी गांव में हो, आप
1: जी,
0: वहां से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो।
1: अच्छा जी। कई लोग अपनी निजी या मानसिक परेशानियां किसी के साथ साझा करने में इसलिए भी झिझकते हैं कि उनकी बात दूसरों तक ना पहुंच जाए। ऐसे में क्या टेलीमानस पर की गई बातचीत पूरी तरह गोपनीय रखी
0: जी
1: जाती है?
0: हाँ, जी हाँ, मैंने जैसे पहले भी बोला, टेलीमानस में जो है आपकी हर बात हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। और इवन मैं ये और बताना चाहती हूँ कि टेलीमानस में आप कॉल करके, ज़रूरी नहीं है आप अपना नाम बताएं और या आप अपना एज बताएं, आप अपना सारा डिटेल्स जो है हमसे भी कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। अगर हम
1: अच्छा,
0: आपको ये विश्वास नहीं है इस नंबर पे,
1: बस आप अपना प्रॉब्लम बताएं
0: बस
1: कि
0: आप अपना प्रॉब्लम बताएं और हम आपको हेल्प करेंगे।
1: क्या टेलीमानस की सुविधा किसी खास वर्ग के लोगों के लिए है या कोई भी व्यक्ति? जरूरी नहीं कि आत्महत्या जैसे फीलिंग्स आ रही है सिर्फ वही बात कर सकते, ऐसा नहीं है ना।
0: नहीं नहीं जी नहीं,
1: जैसे
0: एक्चुअली
1: घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो
0: हाँ
1: वो लेडी परेशान है या
0: जी
1: कोई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लोग भी टेलीमानस से संपर्क कर
0: जी
1: सकते हैं।
0: जी टेलीमानस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई बच्चों से बूढ़े तक, कोई भी टेलीमानस को कॉल करके हेल्प मांग सकता है। जो भी परेशान है, तनाव से जूझ रहा है, या घर में कोई पारिवारिक समस्या है, रिलेशनशिप इश्यूज, बच्चों में परीक्षाओं की कोई
1: हाँ,
0: समस्या,
1: स्ट्रेस हो
0: स्टडीज
1: जाता है
0: स्टडीज का स्ट्रेस, कोई
1: जी।
0: भी परेशानी है तो आप बेझिझक टेलीमानस में कॉल कर सकते हैं।
1: टेलीमानस की तरफ से अभी तक किस तरह के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, इस बारे में कुछ बताएं।
0: जी, टेलीमानस जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस पर काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा टेलीमानस टीम जो है हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं, सब में हम एक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम बता रहे हैं कि टेलीमानस क्या काम करता है, उसका क्या मेन उद्देश्य है और कौन से लोग इसमें बात कर सकते हैं और कैसे आप बात करके अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं।
1: जैसे कि अंडमान में काफ़ी अब ये प्रॉब्लम चल रहा है कि ड्रग एडिक्शन,
0: जी हाँ
1: हमारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा संख्या में उस तरफ जा रहे हैं,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: ड्रग एडिक्शन से जो बच्चा जूझ रहा है
0: जी
1: और वो वहाँ से निकलना चाहता है,
0: जी
1: तो उसके लिए आप कैसे उनको असिस्टेंस
0: जी
1: देते
0: हाँ,
1: हैं?
0: जैसे अभी हमें ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ड्रग एडिक्शन में बच्चा बहुत परेशान है, टीचर्स से आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, तो हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं हर स्कूल्स में, इससे ये ही जागरूक हम करा रहे हैं हर टीचर्स के अंदर, बच्चों के अंदर कि आप
1: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति को आप कौन सा महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर इस महीने जो हम 10 सितंबर को मना रहे हैं, हर वर्ष ये मनाया जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टेलीमानस जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रही है। इस वर्ष का यही संदेश है कि आत्महत्या को लेकर आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी बना सकती है और किसी को एक उम्मीद जगा सकती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं, उदासी महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हर अंडमान के द्वीपवासियों से यही कहना चाहूँगी कि टेलीमानस हर कदम आपके साथ है। आप टेलीमानस के टोल फ्री नंबर 14416 पर कॉल करिए और अपना मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए।
1: आपने आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषय पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उम्मीद है कि आज की बातचीत के माध्यम से हम यह समझ पाएंगे कि बात करना कमजोरी नहीं बल्कि मदद की दिशा में पहला कदम हो सकता है। आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: याद रखिए, एक बातचीत किसी की सोच बदल सकती है, एक सहारा किसी की उम्मीद लौटा सकता है और एक समय पर उठाया गया कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि आत्महत्या को रोकने की शुरुआत बड़ी बड़ी बातों से नहीं, एक छोटी सी पहल, एक बातचीत से हो सकती है। बात कीजिए, साथ दीजिए, उम्मीद जगाइए, क्योंकि हर जिंदगी अनमोल है और हर जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।

आमने सामने कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विषय पर टैली मानस परामर्शदाता डॉक्टर सुमित्रा मंडल के साथ तरन्नुम मोहम्मद की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री अनिल सक्सेना की लिखी झलकी क्या करें।

0: नहीं जाना क्या? ये लो, तुम तो बिस्तर में घूम हुए बैठे हो और मैं तुम्हें बाथरूम से लेके सारे कमरों में ढूंढ आई। ए जी, यह गुमसुम से सर लटकाए क्यों बैठे हो? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना?
1: प्लीज शांति, तुम थोड़ी देर को शांत हो जाओ और मुझे शांति के साथ कुछ सोचने दो। तुम नहीं जानती शांति, मैं सोचते सोचते बहुत दूर निकल गया।
0: हे जी, रुको रुको, देखो ज्यादा दूर ना निकल जाना, नहीं तो मैं अकेले रह जाऊंगी। हाँ देखो, घर में सिर्फ दो ही प्राणी हैं, एक पत्नी व्रता तुम और एक पति व्रता मैं। हाँ डियर, तुम तो जानते ही हो कि शादी के 12 साल पूरे होने को आए हैं, पर मुझ अभागिन की गोद हरी न हुई। मैं जानती नहीं क्या कि तुम बच्चों की हुक दिल ही दिल में छुपाए घुटते रहते हो, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो।
1: शांति शांति, पे शांत हो जाओ, क्यों अशांति फैला रही हो? जब भी कोई भी बात कहीं से भी शुरू हो तुम उसे घुमा फिरा कर दूसरी शादी पर ले आती हो, भला ये भी कोई बात है?
0: और क्यों जी, जब भी मैं आपसे कोई बात करती हूँ तुम ऐसे बिदकते हो जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया हो या तुम्हें कुनैन की गोली खिला दी हो।
1: ओहो शांति, आखिर तुम चाहती क्या हो?
0: सुनो जी।
1: बोलो जी।
0: अस्पताल में मैंने डॉक्टर की और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, उसने आपसे साफ साफ कह दिया था, मिस्टर सक्सेना आप अपनी वाइफ से बच्चे की उम्मीद ना रखें।
1: तो फिर?
0: इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तुमसे खुशी खुशी कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा।
1: शांति शांति प्लीज, हर बात में तुम दूसरी शादी कर लो, अरे दूसरी शादी कर लो कहती हो। अरे दूसरी शादी करना हर बात का इलाज तो नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मगर अब मैं तुम्हारी इस एक ही बात को सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। अगर तुमने मुझे इस बात का टॉर्चर देना बंद नहीं किया तो मैं कह देता हूँ और अपनी पतिव्रता पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा।
0: क्या कहा डियर तुमने? तुम आत्महत्या कर लोगे?
1: हाँ हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
0: डियर, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सचमुच आत्महत्या कर लोगे?
1: हाँ हाँ डार्लिंग, मैं एकदम सीरियस हूँ और सचमुच आत्महत्या कर लूंगा।
0: डियर, तुम आत्महत्या कैसे करोगे?
1: मैं हाँ, इस पंखे में से मैं रस्सी में फंदा लगाकर मर जाऊंगा।
0: यानी कि पंखे से लटक कर मरोगे और पुलिस घर में आकर मुझे परेशान करेगी, तमाम पूछताछ करेगी। नहीं नहीं डियर, ये ठीक नहीं।
1: हाँ ये बात तो सही है, तो मैं ट्रक के नीचे दबकर मर जाऊंगा, ये ठीक है।
0: अरे नहीं डियर, ट्रक को आता देख के तुम घबरा जाओगे और बचने की कोशिश करोगे, बस तो जाओगे, पर बचने की कोशिश में यदि हाथ या पैर कट गया तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर पड़े रहोगे और मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। कमाएगा कौन और घर का खर्च कैसे चलेगा? नहीं नहीं ये भी नहीं।
1: तो फिर मैं जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, ठीक?
0: और कहीं जहर अगर नकली हुआ तो?
1: अरे मैं ऊंचे लेवल का सोर्स लगाकर असली जहर मंगा लूंगा।
0: वो तो ठीक है, मगर इधर तुम जहर खाओ।

0: उधर पुलिस तुम्हारे मरने के बाद इस शरीर का पोस्टमार्टम करेगी। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति हो वो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। नो नो डियर, जहर खाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दो।
1: ठीक है मंजूर, तुम कहती हो तो जहर खाने का प्रोग्राम कैंसिल। आइडिया, मैं समुद्र में कूद कर जान दे दूंगा।
0: डियर तुम कितने भुलक्कड़ हो। अरे भूल गए, जब हम शादी से पहले पिकनिक मनाने गए थे और अचानक मेरा पैर बोट से फिसल गया था तो मैं पानी में बहने लगी थी, तो तुमने ही बोट से कूदकर मुझे डूबने से बचाया था और तभी हम दोनों में प्रेम हुआ और फिर शादी। तुम तो इतने अच्छे तैराक हो डियर। अरे मरने के लिए समुद्र में कूदोगे तो तैर कर दूसरी तरफ निकल जाओगे।
1: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो डार्लिंग तुम ही बताओ ना, मैं किस तरह आत्महत्या करूँ।
0: अरे कभी भी कोई हिंदू नारी अपने पति को आत्महत्या करने के तरीके बताती है क्या? वो तो तुम्ही को सोचने होंगे।
1: तो फिर मैं किसी ऊंचे पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा, यह सही रहेगा।
0: अरे नहीं नहीं, क्या खास सही रहेगा। ऊंचे पहाड़ से कूदने के पश्चात खुदा न खास्ता अगर आदमी बच जाता है तो उसकी याददाश्त गुम हो जाती है, और तुम्हारी याददाश्त खो गई तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। इससे तो अच्छा डियर तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल ही कर दो, मैं ही आत्महत्या कर लूंगी।
1: डार्लिंग क्या तुम आत्महत्या करोगी?
0: हाँ करूंगी।
1: क्या सीरियस हो?
0: हाँ एकदम सीरियस।
1: तो तुम आत्महत्या किए बिना नहीं मानोगी?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: तो तुम आत्महत्या कैसे करोगी? हाँ तुम इस पंखे से लटक कर मर जाओ।
0: मैं पंखे से लटक के मर तो जाती, लेकिन सब यही कहेंगे कि तुमने मुझे मार के पंखे से लटका दिया। मैं मरने के बाद तुम पर इल्जाम नहीं आने देना चाहती हूँ डियर। मैं पंखे से लटक के नहीं मरूंगी। हाँ
1: तो तुम जहर खाकर मर जाओ।
0: मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पोस्टमार्टम गवारा नहीं कर सकोगे, इसलिए जहर खा के भी नहीं।
1: तो फिर
0: क्या, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ।
1: तो ठीक है, दोनों साथ साथ मरने का प्रोग्राम बनाए। ऐसा करें, कोई शुभ मुहूर्त किसी अच्छे पंडित से निकलवाते हैं और देखो तो शांति कौन आया है।
2: अरे मैसेंजर मौसी तुम कहो कैसी हो।
3: अरे एक मैं ही तो हूँ जो मोहल्ले भर की चिंता करती हूँ, हर घर की शुभ चिंतक हूँ, और लोगों ने मेरा ही नाम बिगाड़ के रख दिया है, मैसेंजर मौसी। अरे तुम मोहल्ले में रहती हो, तुम्हें मोहल्ले की कुछ खबर भी है? वो जुगल किशोर है ना, वो अपनी पत्नी के साथ बड़ी बहादुरी से।
1: नमस्कार मौसी, कैसी हो?
3: अरे ठीक हूँ रे। हाँ तो शांति, मैं कह रही थी।
1: अरे मौसी अपनी न्यूज बाद में देना, चली मेरी बात का जवाब तो दो, नहीं तो तुम्हारी बातों में मैं अपनी बात कहना भूल ही जाऊंगा।
3: आज तक कभी ऐसा हुआ तो नहीं, फिर भी ठीक है, तू ही अपने पेट का दर्द हल्का कर ले। पर जल्दी पूछ क्या पूछना है, मेरे पास टाइम जरा कम है।
1: मौसी तुम्हारी नजर में कोई अच्छा पंडित या ज्योतिषी है?
3: पंडित ज्योतिषी, अरे हाँ है क्यों नहीं, पास ही मेरे देवर के गांव में एक पंडित जी हैं, बड़े बांझे हुए हैं, बहुत नाम है उनका। मेरे देवर का एक दोस्त है राम खिलावन, वो अपनी श्यामली को बहुत प्यार करता है।
1: श्यामली, राम खिलावन, लेकिन मौसी मैं तो।
3: अरे पूरी बात तो सुन ले, बीच में टांग ना अड़ा। हाँ तो मैं कह रही थी कि राम खिलावन अपनी श्यामली को बहुत प्यार करता है। 3 साल से उसकी श्यामली के कोई बच्चा नहीं हुआ था, उसने उसी पंडित से जाकर पूछा तो पंडित जी बोले कि इस साल अवश्य होगा, और फिर उसी साल हुआ, पगत पड़ा हुआ।
1: क्या राम खिलावन की बीवी के पड़ा हुआ?
3: अरे इसमें इतना

0: करने की क्या बात है?
1: क्यों मौसी?
0: अरे क्यों क्या? श्यामली कोई राम खिलावन की बीवी थोड़े ही है।
1: क्या बीवी नहीं तो क्या कोई दूसरी औरत?
0: दूसरी औरत? अरे श्यामली तो राम खिलावन की भैंस का नाम है।
1: भैंस?
0: हाँ, पंडित जी से थोड़ी चूक जरूर हो गई। उन्होंने कहा था कि पटिया होगी और हो गया पड़ा। पर पंडित के लिए तू क्यों पूछ रहा था रे?
1: वो मौसी, वो बात यह है कि वो आत्महत्या होती है ना, आत्महत्या।
0: अरे होती क्या है रे, हुई है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि आत्महत्या करने की कोशिश की है गधों ने मोहल्ले में।
1: कहाँ? किसने मौसी?
0: अरे कहाँ क्या, तुम लोगों को दुनिया की कोई खबर तो है नहीं, दोनों दुबके रहते हो अपने घर के अंदर। वो तो एक मैं ही हूँ जो सबके दुख तक बांटती हूँ घर घर जाकर।
1: मौसी आगे भी कुछ बोलोगी या सस्पेंस ही पैदा करते रहोगी?
0: और सुनो, अरे मैं तो इतनी देर से बकने को तैयार हूँ और तुम दोनों हो कि सुनना ही नहीं चाहते।
1: ओहो मौसी,
0: ठीक है ठीक है, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरे पास आज टाइम जरा कुछ कम है, इसीलिए शॉर्टकट में बता रही हूँ।
2: वो जुगल किशोर है ना,
0: वही जिसने 6 महीने पहले लव मैरिज की थी।
2: अरे हाँ हाँ, वो ही जुगल किशोर। दोनों अपने घर वालों की ताने भरी बातें सुन सुनकर तंग आ चुके थे। आज दोनों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर साथ साथ आत्महत्या करने का प्रोग्राम बनाया था।
1: प्रोग्राम बनाकर फिर आत्महत्या नहीं की क्या?
2: की थी लेकिन मरे नहीं। हाँ बुरी तरह जल जरूर गए और रो रो कर सबसे कह रहे थे कि आप लोग हमको किसी भी तरह बचा लो, हम मरना नहीं चाहते।
0: फिर मौसी? फिर क्या, अब अगर बच गए तो पुलिस नहीं छोड़े?
1: क्यों पुलिस क्यों?
0: अरे आत्महत्या करना कानूनन अपराध है ना, और योनियों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य योनि, जो 84 लाख योनियों को भोगने के बाद प्राप्त होती है।
3: सुना जी तुमने, 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है मनुष्य योनि।
0: और ईश्वर मनुष्य योनि लेकर इंसान को एक सुनहरा मौका देता है अपना कल सुधारने के लिए।
1: वो तो ठीक है, मगर मौसी जिसके जीने का कोई सहारा ही ना हो वो तो क्यों है ना शांति?
0: है नहीं? हाँ हाँ, अरे पढ़े लिखे होकर क्या अनपढ़ो जैसी बातें करते हो।
2: सहारा? अरे पहले तुम खुद सहारा देने की कोशिश करो तो वो खुद तुम्हारा सहारा बन जाएगा।
3: इसीलिए तो मैं इनसे कहती हूँ मौसी कि तुम दूसरी शादी कर लो तो वह तुम्हें बच्चे के रूप में जीने का सहारा देगी।
1: शांति शांति, फिर वही बात की तुमने, देखो मैं
3: मैं दिल से थोड़ा ही कहती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल को टोने के लिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए कहती हूँ।
0: अगर वास्तव में तसल्ली और राहत देना व लेना चाहती हो तो अनिल को अनाथालय ले जाओ।
3: क्या? अरे वाह मौसी, यदि मैं इन्हें अनाथालय छोड़ जाऊंगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी?
2: अरे शांति, मैं अनिल को अनाथालय छोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों को वहां से अपना बच्चा चुनकर लाने के लिए कह रही हूँ, समझी?
1: वाह मौसी, ठीक कहती हो, हमारा और शांति का बच्चा।
3: मौसी तुमने तो ये प्यारी सलाह दे के हमारे जीवन की उलझनों को सुलझा दिया, इस घर को जीने का सहारा दे दिया। अरे तुम्हारा नाम मैसेंजर मौसी नहीं बल्कि उलझन सुलझाओ मौसी होना चाहिए।
2: अरे जा रही कंजूस कहीं की, मुझे नाम देकर डरका रही है, मैं तो कल आकर भर पेट मिठाई खाऊंगी। हाँ अब मैं चलती हूँ।
1: तो अब आओ डार्लिंग,
0: आत्महत्या करें?
1: अरे नहीं, अनाथालय चले।
4: श्रोताओं, अभी आप श्री अनिल सक्सेना की लिखी झलकी

क्या करें सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता सतीश माथुर, प्रस्तुति सहायक जेएस राज, भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती श्रद्धा आर्या, श्री राकेश चंद्रलाल, श्रीमती मधु अग्रवाल। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के कुछ कार्यक्रमों से अवगत करवा दें। 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है और विश्व शिक्षक दिवस पर चर्चा सुन पाएंगे। 8:00 का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। 8:00 इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:30 पर अनमोल विचार के साथ। तत्पश्चात आप सुनेंगे प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:55 पर। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 6:10 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा नजर शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस का। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे। और इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में अभिलाष तिवारी के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा हुनर से आत्मनिर्भरता तक। और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता और जगजीत सिंह। 9:00 कार्यक्रम में सुबह 9:00 राष्ट्रीय निर्माण के शिल्पकार शिक्षक से जानकारी आप सुनेंगे और साक्षरता दिवस पर चर्चा होगी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप संजीव अभ्यंकर का गायन सुनेंगे। सुबह 10:00 हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 7:00 होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर बीआर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। और अंडमान एवं निकोबार कमान मुख्यालय 8 अक्टूबर को अपनी रजत जयंती मनाएगा। समारोह के भाग के रूप में 27 सितंबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से जुड़े चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। श्री मोदी ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरों पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। हर माह एक महत्वपूर्ण विचार पर आधारित यह श्रृंखला न्यायाधीशों, विधिक संगठनों, शिक्षाविदों, प्रख्यात विशेषज्ञों और युवा विधिक विद्वानों को एक साथ लाएगी ताकि वे विधिक व्यवस्था और समाज से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार विमर्श कर सकें। मुख्य न्यायाधीश श्रृंखला के विषयों, वक्ताओं और समग्र प्रारूप का मार्गदर्शन करेंगे जिसमें प्रत्येक संस्करण एक समकालीन और महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, स्थापना दिवस और मैराथन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। डीब्रेड की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सन्मुख कौर ने अपने संबोधन में शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों का मार्गदर्शन करने में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया। संस्थान में 4 दशकों से जुड़े सबसे वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर वी अलगू सुंदरम ने संस्थान की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक की भूमिका कक्षा में पढ़ाने से कहीं आगे बढ़कर नैतिक मूल्यों और जीवन

0: का सामना करने से संबंधित जानकारियां प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर एड्स नियंत्रण समिति और रोटरी क्लब ऑफ पोर्ट ब्लेयर के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित की गई। हरित पहल के तहत रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सदस्यों, प्राचार्य, विभागाध्यक्षों और परिसर टीम द्वारा 11 फलदार पौधे लगाए गए। इसी प्रकार समारोह के दूसरे भाग के रूप में शिक्षक दिवस भी संस्थान में मनाया गया, जिसमें छात्रों द्वारा संचालित एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अंडमान एवं निकोबार कमान मुख्यालय 8 अक्टूबर को अपनी रजत जयंती मनाएगा। रजत जयंती समारोह के भाग के रूप में कमान द्वारा खेल एवं युवा मामले निदेशालय के सहयोग से 27 सितंबर को मैराथन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इस मैराथन में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए विभिन्न श्रेणियों में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी। यह आयोजन रक्षा कर्मियों और द्वीपों के नागरिक दोनों के लिए खुला रहेगा। यह मैराथन सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर कार्वेंस्कोप तट होते हुए वापस नेताजी स्टेडियम में संपन्न होगा। शिक्षा निदेशालय और कॉलेज एवं संस्थानों से कहा गया है कि वे छात्रों को मैराथन में भाग लेने के लिए निर्देशित करें। आम जनता से भी इस मैराथन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अंडमान एवं निकोबार कमान के रजत जयंती समारोह का हिस्सा बनने की अपील की गई है। इच्छुक प्रतिभागी 26 सितंबर तक 9434290640 पर संपर्क कर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने अपने जिलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन क्षमता, परंपराओं, व्यंजनों, कला और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया है। यह चैलेंज प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पहल पायलट चरण के तहत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसके तहत पायलट सबमिशन विंडो को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इच्छुक प्रतिभागी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माई वेव्स सेक्शन पर अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। उत्तर और मध्य अंडमान पुलिस ने हाल ही में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया। 31 अगस्त को रंगत पुलिस थाना के सहयोग से बगुंतला की टीम ने कलसी में जंगल की तलाशी लेने पर लगभग 165 लीटर अवैध लहन बरामद की, जिसे बाद में प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दिया गया। वहीं 3 सितंबर को पुलिस थाना बिल्ली ग्राउंड के सहयोग से बादामनाला की टीम ने गोविंदपुर के घने जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाकर लगभग 200 लीटर अवैध लहन बरामद की, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। डॉ बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। और अंडमान एवं निकोबार कमान मुख्यालय 8 अक्टूबर को अपनी रजत जयंती मनाएगा। समारोह के भाग के रूप में 27 सितंबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई सूचना नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल।

लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों की यात्रा कार्यक्रम। एमवी स्ट्रीट आइलैंड कल सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 8 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए एमवी कैमल भी 6 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर 7 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 8 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल 10 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा त्रेसा कचाल नैनकोरी माकाचूहा और अर्फा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 13 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान नालंदा नैनकोरी और कैमल बे जाने के लिए 8 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 10 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा के स्थान पर अब एमवी कचाल कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 7 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: of India. Because every district has a story worth telling.
1: इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से। गायक कलाकार है अलका याग्निक और सोनू निगम। गीत रचना सुधाकर शर्मा का तथा संगीत हेमेश रेशमिया का है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना ही असली परीक्षा है। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता और तब मन में निराशा आने लगती है। ऐसे समय में याद रखना चाहिए कि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह

मेहनत का परिणाम भी अपनी गति से आता है। जरूरी नहीं कि हर प्रयास तुरंत सफलता दे, लेकिन हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। इसलिए असफलता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे अपने अगली सफलता की तैयारी बनने दीजिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, शिक्षक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 5 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल पुस्तकें ज्ञान ही नहीं, बल्कि हमें अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का महत्व भी समझाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। विद्यालयों में भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। शिक्षक दिवस हमें अपने शिक्षकों के योगदान को याद करने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है।

0: दोस्तों, आज माह का पहला शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका है, लेकिन समुद्र की गहराइयों के बारे में हमारी जानकारी अभी भी सीमित है। गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश लगभग नहीं पहुंचता, फिर भी वहां अनेक अद्भुत जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। समुद्र की गहराई आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और खोज का विशाल संसार है।

दोस्तों, बांस दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। बांस की कुछ प्रजातियां अनुकूल परिस्थितियों में एक दिन में कई दर्जन सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि बांस का उपयोग निर्माण, कागज, फनी और अनेक पारंपरिक वस्तुओं में किया जाता है। यह मिट्टी को बांधने और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भी मदद करता है।

दोस्तों, आसमान में तैरते हुए बादल देखने में हल्के और रुई जैसे लगते हैं, लेकिन एक सामान्य बड़े बादल में लाखों लीटर पानी की बूंदें या बर्फ के छोटे छोटे कण मौजूद हो सकते हैं। फिर भी बादल हवा की धाराओं के कारण आकाश में बने रहते हैं। जब पानी की बूंदें पर्याप्त बड़ी और भारी हो जाती है, तो वे वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है।

दोस्तों, मधुमक्खियों का संसार भी बेहद अद्भुत है। काम करने वाली मधुमक्खियां भोजन का अच्छा स्रोत मिलने पर छत्ते की दूसरी मधुमक्खियों को उसकी दिशा और दूसरों के बारे में संकेत देती हैं। इसके लिए वे विशेष प्रकार की गतिविधियां करती हैं, जैसे वैज्ञानिक वंगल डांस करते हैं। यानी मधुमक्खियों के लिए नृत्य केवल गतिविधि नहीं, बल्कि जानकारी साझा करने का माध्यम भी है।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए फिल्म इम्तिहान के एक गीत से। मजरू के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अभी आप लता मंगेशकर को फिल्म खानदान में सुन रहे थे। राजेंद्र किशन के गीत को संगीत से सजाया था रवि ने। लीजिए अब सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार गुलजार की गीत रचना। गायक है किशोर कुमार तथा फिल्म का नाम

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की गीत रचना। गायक है किशोर कुमार। फिल्म

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म अभिमान का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है SD बर्मन ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री

समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफरदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किए हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार।

0: और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं।

0: विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
6: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
5: हमने इस मामले में

0: और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
1: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pinch Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast

0: equality of opportunity enshrined in our constitution. She also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education.
1: Savitribai Phule, आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की

0: भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
1: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था। और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था, बल्कि सार्वभौम दुख था। और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की, बांच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की, बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा, गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथेय संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथेय बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसा कर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को, जो घर

0: बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए, और अब दुख का कोष भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है। यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है, और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है, जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में, मनुहारों में, क्या आंसू में, उद्गारों में, आवाहन में, अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को, यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है। तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार, अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है, और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर बसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही बसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है, और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शत बार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वो अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं, और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं, कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं, कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है, और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: तो कहते हैं महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात लिखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी, अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो 8वें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी, निर्जा में जाके गीति का तत्व आ गया मुझे, और मैंने मानव दिशा भी पा ली है। कभी कभी आज

0: आश्चर्य होता कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा ये।
1: ये है महादेवी, और महादेवी की कविता में अव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो, मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुक कर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनतकश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साए में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्मदिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया, वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साए में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
5: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी,
4: जी।
5: आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
4: जी,
5: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
4: जी,
5: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
4: जी।
5: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
4: जी।
5: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक
4: जी,
5: यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदरस मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
4: जी,
5: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
4: जी,
5: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
4: जी।
5: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बनी।

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो,
1: हाँ,
0: जो शब्दकोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी, जी
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगू।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने, औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से,
0: व्यवस्था,
1: और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय, वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद।
0: जिद
1: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
1: रिक्शा वाला भी समझ सकता है,
0: और एक प्रोफेसर भी समझता,
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
0: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल सा थर थर, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो गठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है।
1: जी जी।
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनके गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो, मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों

फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से कार्य क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खास क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में कार्य क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खाद क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खाद क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खाद क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खाद क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत

0: कहीं 20-30% के आसपास है तो कहीं 40-50% से ऊपर, और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गांव क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गांव क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गांव क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गांव क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी गंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलोडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री VSP गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद।

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज की इस राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्र संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अब प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निर्माण प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Sri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Sahib Panse Gharana, Sri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Sri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Sri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chhabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaro, Kalidas Samaro, and Chakradhar Sangeet Samaro, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Sri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhaptal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Sri Jagdish Barot, providing the Lehra.

ಫರ್ಮಾಯಿಸಿ ಚಕ್ರ.

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्षपान दुराले लचकत फिरकत चलत पांक चितवन अति प्यारी चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत पांक चितवन अति प्यार चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृषपान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चितवन अति प्यार चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखीरा धारा।

श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झपताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झपताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई सूचना नहीं है। परसों सुबह तक की मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:56 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6:00 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की 15वीं तिथि तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं शुभारंभ। इसके अंतर्गत सुनिए अनमोल विचार।
1: हमारा अतीत हमारे आकर्षण का सदा से विषय बना हुआ है। यद्यपि हमारे अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो हम भूलना चाहते हैं, फिर भी उसके अधिकांश हमें ऐसा प्रकाश पुंज मिल जाता है जो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर देते हैं।
0: अनमोल विचार के बाद आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृ वंदना।